பூவை போல சிரிக்கும் உன்னை கண்டு.

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: தொடர்வது செய்திகள்.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमानी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर टेकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे, जिससे कल्याणकारी योजनाओं की ट्रैकिंग और स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के कार्य को बेहतर बनाया जा सके। इस कार्यक्रम से पहले गृहमंत्री अहमदाबाद के चांदलोडिया में साबरमती विधानसभा क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों और शक्ति केंद्र प्रभारियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वह सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने अपने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर था उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक बताया, जिसमें लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 12,000 से ज्यादा शटल उड़ानों के जरिए 67,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने यात्रा की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के कोचिंग सेंटरों को चेतावनी दी है कि अनिवार्य सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर उन्हें संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक मजबूत नियामक कानून लाएगी, जिससे कड़ी निगरानी, अधिक जवाबदेही और छात्रों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को अपने कोचिंग सेंटर में किसी भी प्रकार की लापरवाही या सुरक्षा उपायों की कमी की रिपोर्ट ईमेल, संदेश या फोन से करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गोवा में 14 वर्षीय एथन वॉज ने बोस्निया और हर्जगोविना में आयोजित सराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इस उपलब्धि के साथ ही एथन अनुराग महामल और लियोन मेंडोगा के बाद गोवा से तीसरे ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। एथन ने 10 ग्रैंड मास्टरों को पीछे छोड़ते हुए ये खिताब अपने नाम किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज सुबह पनामा को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका के न्यू जर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगम में और हैरी केन ने एक एक गोल किया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से हराया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे स्थान पर रहा। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1,430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ था। देश में 68,000 से अधिक लोगों के लापता होने की भी खबर है। लागुएरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है।

0: போட்டியில் இந்தியா இன்று ஆஸ்திரேலியாவை எதிர்கொள்கிறது. இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவடைகிறது.
1: இயம் ஆகாஷவாணி சம்பிரதி வார்த்தாக ஸ்ரூயந்தாம் பிரவாச்சக புனித திரிபாடி. अथ वार्ताः. प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य प्रातः 11 आकाशवाणीतः मन की बात इति कार्यक्रमे स्वीयं मनोगतं प्रकटयिष्यति. मासिकस्यास्य आकाशवाणी कार्यक्रमस्य एतत् 35-तमं संस्करणं भविष्यति. आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं भविष्यति. अयं हि कार्यक्रमः आकाशवाणी वार्ता विभागस्य अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अपि च न्यूज ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति. आकाशवाणी दूरदर्शन वार्ता प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना प्रसारण कार्यालयानां यूट्यूब वाहिनीभिः अपि अस्य कार्यक्रमस्य साक्षात् प्रसारणं भविष्यति. हिंदी भाषायां प्रसारणस्य पश्चात् अस्य प्रसारणम् आकाशवाण्या क्षेत्रीय भाषासु अपि भविष्यति. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति. उभौ नेतारौ द्वैपाक्षिक सहयोगस्य पूर्णव्याप्तेः समीक्षां करिष्यतः तथा च परस्परस्य क्षेत्रीयान्तराष्ट्रिय विषयेषु मतानाम् आदान प्रदानं करिष्यतः. अद्य प्रधानमंत्री श्रीमोदी सेशेल्स देशस्य राष्ट्रीय सभां संबोधयिष्यति. भारतीय प्रवासी सदस्यैः सह संवादमपि विधास्यति. पश्चात् प्रधानमंत्री रोश कैमन इत्यत्र राष्ट्रीय दिवस समारोहे भागं भजिष्यति. मन्त्रालयेन उक्तं यत् भारतीय रक्षाबलानां एकेन दलेन सह भारतीय नौसेनायाः द्वाभ्यां नौकाभ्यां सह श्रीमोदी उत्सवे भागं ग्रहीष्यति. प्रधानमंत्री श्रीमोदी ह्यः सेशेल्स देशस्य त्रिदिवसीय यात्रायां विक्टोरिया नगरं सम्प्राप्तवान्. विमानस्थानके सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन तस्य भव्यं स्वागतं विहितम्. केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः भारतीय समवाय विशेषान् भारत यूके व्यापक आर्थिक व्यापार संधेः CETA इत्यस्यान्तर्गतम् उदयोन्मुखावसरान् सुस्थिर व्यापार वृद्धौ परिवर्तयितुं यूके देशस्य समकक्षैः सह सम्पर्कं सुदृढं कर्तुं प्रार्थयत्. लंदन नगरे भारत यूके प्रगति व्यापार पूर्ण सम्मेलने सहभागिनां नेतृत्वावधौ मंत्रिणा इदमुक्तम्. दिल्ल्याः मुख्यमंत्री रेखा गुप्तावर्या सावधानं कृतवती यत् यानि कोचिंग इति प्रशिक्षण केन्द्राणि अनिवार्य सुरक्षा मानदंडानां पालनं न करिष्यन्ति तानि दिल्ल्यां कार्यं कर्तुं नानुमन्यन्ते. एकस्मिन् वीडियो संदेश श्रीमती गुप्ता अवदत् यत् दिल्ली सर्वकारः शीघ्रमेव कठोरं निरीक्षणं बृहत्तरं उत्तरदायित्वं छात्राणां सुरक्षां च सुनिश्चेतुं दृढं विनियामक विधिं प्रावर्तयिष्यति. भारत ऋतु विभागेन अद्य असम मेघालय उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल सिक्किम प्रदेशेषु अत्यधिक वृष्ट्यै रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता अस्ति. बिहार छत्तीसगढ़ कर्नाटक कोंकण गोवा ओडिशा तमिलनाडु पुदुचेरी करैकल तेलंगाना विदर्भ लक्षद्वीप अंडमान निकोबार द्वीपेषु अपि आगामी दिनद्वयोः कृते विभागेन संचेतना प्रसारिता अस्ति. ऋतु विभागेन ख्यापितं यत् श्वः दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ उत्तर प्रदेश इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्णतरंगस्य स्थितिं भविष्यति. फीफा विश्वकप क्रीडायां इंग्लैंड देशेन अद्य प्रातः अमेरिका देशस्य न्यूजर्सी क्रीडांगणे स्वस्य ग्रुप एल क्रीडायां पनामा देशं 2-0 इत्यंकैः पराजितम्. प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता संबद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणं आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 11:30 भविष्यति. भवन्तः सर्वे श्रोतुं प्रभवन्ति इति वार्ताः.

0: सरोकार महानगरों की खबरें होंगी, इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र करेंगे और मौसम का हाल जानेंगे और अंत में याद करेंगे कुछ जानी मानी शख्सियतों को। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और प्यार भरा नमस्कार एक बार फिर से आप सभी को और शगुन आपको भी।
1: नमस्कार फरत एंड टू आवर लिसनर्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी। वेल, एवरी मॉर्निंग इज अ जेंटल रिमाइंडर that anything is possible, and on that note we are beginning with optimism and positivity, and as we delve into the freshness of the morning, this is Aaj Savere, so let's begin with the headlines.
0: Ji Shagun, sabse pehle hum Mann Ki Baat se shuruaat karte hain. Pradhanmantri Narendra Modi aaj subah 11 baje Akashvani se Mann Ki Baat mein desh videsh ke logon se apne vichar saajha karenge aur ye masik radio karyakram ki 135vi kadi hogi. Karyakram ka prasaran aapko bata dein Akashvani aur दर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा और हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा।
1: Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Seychelles Patrick Hamini today. Both leaders will review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. A report.
2: Today, Prime Minister Modi is scheduled to address the National Assembly of Seychelles and interact with members of Indian diaspora. Later, Prime Minister Modi will participate in the National Day celebration at Roche Kemen. The ministry said that a contingent of the Indian Defence Forces, along with two Indian Navy ships, will also take part in the celebrations. Prime Minister Narendra Modi is on a three-day visit to Seychelles to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. This visit reaffirms the strong and enduring friendship between India and Seychelles and strengthens the shared commitment of both nations to enhance bilateral ties across all sectors. Akshit Vaidyan, Akashwani News, Delhi.
1: Earlier, Prime Minister Modi visited the Botanical Gardens and attended a tree planting ceremony. He also visited the giant tortoise enclosure at the Botanical Garden. Following this, Prime Minister Modi also interacted with members of the Indian diaspora. The Prime Minister reached Victoria yesterday on a three-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hamini, at the airport.
0: और शगुन, कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए भी एक बेहद खुशखबरी है। विदेश मंत्रालय ने निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान नेपाल में फंसे कई भारतीय नागरिकों से सहायता के अनुरोध प्राप्त हुए हैं और इनके पास चीन के लिए आवश्यक प्रवेश पत्र और वीजा भी नहीं है। मंत्रालय ने नागरिकों से सलाह दी है कि वो सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेज प्राप्त होने तक भारत से यात्रा शुरू ना करें और मंत्रालय ने कहा है कि वैध दस्तावेज के बगैर या जरूरी दस्तावेज प्राप्त होने की उम्मीद में यात्रा शुरू करने से परेशान होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और श्रद्धालुओं को यह भी सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि उनका टूर ऑपरेटर पूरी तरह पंजीकृत और अधिकृत हो।
1: The death toll in Venezuela's earthquakes has risen to 1430. The latest figures were released as rescuers continued the search for survivors of the 1-2 punch of 7.2 and 7.5 magnitude earthquakes that devastated the South American nation on Wednesday. We have a detailed report.
3: Venezuela's government has said families reported at least 68,900 people missing 3 days after the earthquakes devastated the South American nation. The National Assembly President Jorge Rodriguez said tens of thousands of people are still working around the clock on search and rescue operations. Meanwhile, the Venezuelan Foundation for Seismological Research, FUNVISES, reported that 4.1 magnitude earthquake was felt across the central region of Venezuela yesterday. The state seismological agency said the epicenter of the latest tremor was located about 35 kilometers west of La Guaira, a key port city on the country's central coast that was declared a disaster zone after sustaining extensive damage from the Wednesday's two powerful earthquake. The agency reported that the quake occurred at a shallow depth of 5 kilometers, which typically amplifies around shaking and increases the potential for structural damages. Seismologists continue to monitor the region closely, with the Venezuelan Foundation for Seismological Research maintaining round-the-clock surveillance. With Rupesh's report, Jigyasa Pandey for Akashwani News, Delhi.
0: अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने कहा है कि शुक्रवार को एक तेलवाहक जहाज किकू पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। सेंट्रल कमांड ने कहा

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஆ சவேரே டெல்லி அஞ்சல்.
1: समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।

नमस्कार, कार्यक्रम आज सवेरे में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज़, और आज मेरा साथ दे रही हैं मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। आज के इस अंक में हम आपको देंगे देश और दुनिया के समाचार और वो सभी जानकारी जिनका है आपसे

0: है कि ईरान ने ड्रोन से तेल टैंकर किकू पर हमला किया और ये टैंकर होमोज जलडमरू मध्य से गुजर रहा था और इसमें 20 लाख बैरल से अधिक कच्चा तेल था।
1: वेल ऑन टू स्पोर्ट्स। फर्स्ट इन बैडमिंटन, India's Kidambi Srikanth stormed into the men's singles final of the US Open Championships in California today. Srikanth defeated Japan's Yudai Ukimoto 22-20, 15-21, 21-19 in a hard-fought semi-final. The former world number one had booked his place in the last four with a 21-9, 12-21, 21-8 victory over Liao Zhufu of Chinese Taipei in the quarterfinals. Meanwhile, India's Ronak Chahan will take on Su Li Lang of Chinese Taipei in the other men's singles semi-final today, keeping alive the possibility of an all-India final. Now, in women's singles, India's Devika Sehag bowed out of the tournament after losing to Denmark's Line Christoffersen in the semi-finals. Christoffersen won 21-16, 11-21, 21-11 to seal her place in the final.
0: और शगुन बैडमिंटन के बाद फीफा फुटबॉल विश्व कप की बात कर लेते हैं। इंग्लैंड ने आज सुबह पनामा को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका के न्यू जर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगम और हैरी केन ने एक गोल किया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के एक अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से हराया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे स्थान पर रहा।
1: Now, as part of our series Prakriti Ki Baat Akashwani Ke Saath, we bring you a conversation on Chhattisgarh's Garbage Cafe. Run by Ambikapur Municipal Corporation, the cafe offers meals in exchange for plastic waste. In the program, we speak to Ritesh Seni, in charge of the Garbage Cafe.
2: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
3: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
4: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहाँ तक पहुँच गया। सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया, तो उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है।
5: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: So, to listen to the conversation, tune into 100.1 Akashwani Gold today morning at 9:10 a.m. You can also listen to it on News on AIR app and News on AIR official YouTube channel.
0: तो चलिए शगुन, अब महानगरों की खबरों का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले दिल्ली की खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चेतावनी दी है कि जो कोचिंग सेंटर जरूरी सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करेंगे, उन्हें दिल्ली में काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। एक वीडियो मैसेज में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक मजबूत रेगुलेटरी कानून लाएगी ताकि ज्यादा सख्त निगरानी, बेहतर जवाबदेही और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ये फैसला बार बार होने वाली आग की घटनाओं और हाल ही में लखनऊ के कोचिंग सेंटर में लगी आग के बाद लिया गया है, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं दिल्ली जल बोर्ड ने टैंकर आधारित जलापूर्ति में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। पिछले वर्ष की तुलना में 82,117 से अधिक अतिरिक्त टैंकर जलापूर्ति दर्ज की गई है। जल बोर्ड ने बताया कि पिछले वर्ष मई में जहां 1,06,501 टैंकर जलापूर्ति दर्ज की गई थी, वहीं इस वर्ष मई में ये संख्या बढ़कर 1,88,618 टैंकर जलापूर्ति तक पहुंच गई है। और इसके साथ ही इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 372 से अधिक अतिरिक्त जल टैंकर लगातार जलापूर्ति सेवा में लगाए गए हैं। वहीं बात कर लेते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की। दिल्ली विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विभिन्न स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए पंजीकरण के पहले चरण की शुरुआत कर दी है। विश्वविद्यालय ने बताया कि सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 में सम्मिलित हुए वे अभ्यर्थी जो दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में प्रवेश लेना चाहते हैं, वो सामान्य सीट आवंटन प्रणाली 2026 पोर्टल CSS पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इसके माध्यम से विद्यार्थी विश्वविद्यालय के 67 कॉलेजों में 100 से अधिक BA कार्यक्रमों सहित 73 स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिला ले सकेंगे। जीयू ने बताया कि अभ्यर्थी केवल अपने CUET UG 2026 आवेदन संख्या के माध्यम से CSAS पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। तो ये तो थी बात दिल्ली की। और अब शगुन आपसे जानते हैं चेन्नई में क्या है खास।
1: जी, सो इन चेन्नई, इन एक्चुअली तमिलनाडु, मोर देन 52.9 लाख चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 दे विल बी एडमिनिस्टर्ड ओरल पोलियो वैक्सीन टुडे। The State Health Department, the

0: State Health Department launches the National Pulse Polio Immunization Drive at 43,051 booths across the state. The government conducted campaigns at primary health centers, even government hospitals, Anganwadi centers, schools and other locations, which started from 7 a.m. and will go on till 5 p.m. today. And in addition to fixed booths, transit vacation centers have also been set up at major bus stands, railway stations, airports, toll plazas and checkposts to cover children on the move as well. So children living in remote and inaccessible areas will also be covered through mobile medical teams. More than 2 lakh personnel, including healthcare workers, Anganwadi staff, teachers and volunteers, will be participating in the campaign. So this was all about oral polio vaccine. This will be administered today.
1: और अब आइए महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं. महाराष्ट्र के सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री प्रकाश आंबेडकर ने राज्य भर के अभिभावकों से आयोजित किए जा रहे राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान में भाग लेने की अपील की है, जिसमें ये सुनिश्चित करना शामिल है कि 5 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे को मौखिक पोलियो का टीका लगाया जाए. श्री आंबेडकर ने बताया कि इस अभियान के लिए महाराष्ट्र भर में 88,489 टीकाकरण बूथ, 26,530 ट्रांजिट टीमें, 13,518 मोबाइल टीमें और 586 रात्रिकालीन टीमें तैनात की गई हैं. इन्होंने अभिभावकों से 5 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को निकटतम टीकाकरण बूथ पर ले जाने का आग्रह किया है. जो बच्चे टीकाकरण बूथ तक नहीं पहुंच पाएंगे, उन्हें अगले 5 दिनों तक शहरी क्षेत्रों में और 3 दिनों तक ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा घर घर जाकर टीकाकरण किया जाएगा. तो एक बहुत ही शगुन अच्छी पहल है, जहां पर बच्चों को टीकाकरण जो है किया जाएगा, क्योंकि उनकी ताकि जो स्वास्थ्य को देखते हुए ये फैसला जो है काफी लाभकारी है.
0: एग्जैक्टली.
1: और अब महाराष्ट्र बांध की बात कर लेते हैं. महाराष्ट्र के बड़े, मध्यम और छोटे बांधों में इस्तेमाल लायक पानी का औसत भंडार कल तक 22.73% था, जो पिछले वर्ष इसी दिन के 82.16% से काफी कम है. अमरावती में इस्तेमाल लायक पानी का भंडार सबसे ज्यादा 38.11% है. इसके बाद बारी आती है नागपुर की, 30.57% है वहां पर. कोंकण की बात की जाए तो 27.72% वहां पर दर्ज किया गया है और छत्रपति संभाजीनगर 24.52% का स्थान ले चुका है. पुणे डिवीजन में पानी का भंडार सबसे कम है, जहां जलाशय अभी अपने इस्तेमाल लायक क्षमता के 13.46% पर है. और अब महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता प्रवेश परीक्षा से संबंधित प्रश्न पत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले पर्दाफाश किया गया है. प्रश्न पत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने बताया कि आरोपी टीईटी के प्रश्न पत्र दिल्ली से लाए थे और कथित तौर पर उन्हें लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे थे. सूचना के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाकर तीनों आरोपियों को सौदा होने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साहू और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है.
0: Heading now to Bengaluru, Farhat. Vice President C.P. Radhakrishnan will launch the Nasha Mukt Bharat campaign in Bengaluru, organized by Rajiv Gandhi University of Health Sciences to mark its 31st Foundation Day. This campaign, set with a goal towards creating a drug-free India, will be organized in collaboration with the Narcotics Control Bureau and Disha Bodh Foundation. And this event will be graced by Karnataka Governor Thavarchand Gehlot, Andhra Pradesh Governor S. Abdul Nazir and Karnataka Chief Minister D.K. Shivkumar. So the students and staff of Rajiv Gandhi University of Health Sciences and its affiliated medical colleges will pledge to uphold the values of academic excellence, ethical healthcare service, social responsibility and to contribute towards building a healthier and drug-free India. And as part of the campaign, the committees formed at the college level will tackle the menace of drug abuse on their campus and ensure that there is no availability of drugs around their campus. And they will provide mental health facilities, which involves psychologists, psychiatrists to help the students rehabilitate. Such a great initiative.
1: बिल्कुल शगुन. और उसी तरीके से पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं. राज्य के शिक्षित युवाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करके आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल सरकार ने आईटीआई कॉलेजों के आधुनिकीकरण पर जोर दिया है. सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस के अवसर पर शनिवार को कोलकाता में बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री जगन्नाथ चट्टोपाध्याय ने कहा कि इन शिक्षण केंद्रों के बुनियादी ढांचे को तेजी से उन्नत करने के लिए अधिक निवेश के लिए राज्य सरकार ने 51 आईटीआई कॉलेजों को निजी संगठनों के साथ 5 साल की अवधि के लिए संयुक्त रूप से संचालित करने का निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न कॉरपोरेट घरानों के साथ संयुक्त

0: अयोध्या में इन कॉलेजों का संचालन करेगी। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें 1,200 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के साथ साथ रोजगार बढ़ाने और युवाओं के कौशल को निखारने के लिए प्रधानमंत्री सेतु योजना पर भी जोर दिया जाएगा।
1: Now we are heading to Hyderabad. This is all about Cinecathon 2026, where Union Minister G. Kishan Reddy emphasized that India's future relies heavily on its creative economy. And this event happened at National Institute for Micro, Small and Medium Enterprises, where he emphasized that India's future relies on creative economy. And he urged the youth to leverage India's vast, thousands of years old cultural heritage and storytelling potential. And he also cited global cinematic wonders, which include Bahubali, RRR, Hanuman. He highlighted India's robust infrastructure growth and noted that the country has built over 100 new airports in the last decade and expanded national highways by nearly 70% and emerged as the world's fourth largest economy. He asserted that infrastructure must be complemented by sharp, creative thinking to generate global intellectual properties. Underlining India's leadership in digital ecosystems, the minister stated that India now dominates global digital transactions and surpassing nations like the US, Germany and China. So this was all about metro cities.
0: महानगरों की खबरों के बाद अब आइए मौसम का रुख कर लेते हैं। राजधानी दिल्ली की सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो आज तैयार हो जाइए क्योंकि मौसम का रुख बदलने वाला है। आज बारिश की संभावना है।
2: वाओ, रियली?
0: जी बिल्कुल, क्योंकि कल काफी गर्मी का एहसास लोगों को था। दो दिनों से हो रहा है,
2: रियली ह्यूमिड।
0: जी बिल्कुल, तो अगर आज बारिश हो जाती है तो मौसम जो है बेहतर हो सकता है। लेकिन तापमान में भी वृद्धि दर्ज होगी, 41 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा जी। न्यूनतम तापमान रहेगा 30 डिग्री सेल्सियस। मुंबई की अगर बात की जाए तो वहां पर भी बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। कोलकाता में बारिश की संभावना है, न्यूनतम तापमान रहेगा 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
2: सो फरत, इन अदर थ्री मेट्रो सिटीज इट मे रेन। चेन्नई इज लाइकली टू विटनेस अ पार्टली क्लाउडी स्काई विद पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रेन और इवन थंडरस्टॉर्म। The temperatures are expected to range between minimum 28 degrees Celsius and maximum 37 degrees Celsius. If we talk about Bengaluru, is forecast to experience a generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature is expected to be 21 degrees Celsius, while the maximum temperature may reach 31 degrees Celsius there. Hyderabad is likely to see a generally cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The temperatures are expected to range from 24 degrees Celsius to 33 degrees Celsius Farhat in Hyderabad.
0: जी, तो ये तो था मौसम का हाल। और अब आइए इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र कर लेते हैं। आज 28 जून 2026 है और सबसे पहले बात करते हैं सन 1846 की। एडोल्फ सेक्स ने वाद्य यंत्र सेक्सोफोन को पेटेंट कराया आज ही के दिन।
2: इन 1919 द ट्रीटी ऑफ वर्साय was signed today at the Palace of Versailles. It imposed severe territorial losses, massive financial reparations and strict military limitations on Germany while establishing the League of Nations.
0: 1857 में नाना साहब ने बिठूर में स्वयं को पेशवा घोषित किया, अंग्रेजों को भारत से उखाड़ फेंकने का आह्वान किया।
2: In 1932, the Marylebone Cricket Club concluded a three-day test match at Lord's, defeating India by 158 runs during India's historic first ever test series.
0: 1894 में आज के दिन श्रम दिवस पर अमेरिका में आधिकारिक अवकाश घोषित हुआ।
2: In 1995, the government of Madhya Pradesh officially designated the state as a tiger state to protect and conserve the big cat population.
0: सन 1902 में अमेरिकी संसद ने स्पूनर कानून पारित कर राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट को कोलंबिया से पनामा शहर के अधिकरण का अधिकार दिया।
2: In 1996, India opened its first official mission in the area under the Palestinian Authority in Gaza City.
0: सन 1981 में चीन ने कैलाश और मानसरोवर का रास्ता खोला।
2: In 2008, T.S. Narayan Swamy, the then chairman and managing director of the Bank of India, was elected as the president of Indian Banks Association. In 2010, the Ganeshwari Express derailed and collided with a freight train in West Bengal's Midnapur district, and this resulted in the tragic deaths of 149 passengers.

0: 1995 में बाघों को शिकारियों से बचाने और उन्हें आश्रय देने के लिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट घोषित किया गया। तो ये तो थी इतिहास की बात, और अब आइए कुछ जानी मानी शख्सियतों को याद कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाने वाले पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव की। वर्ष 2024 में भारत सरकार ने पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित किया।
1: टुडे वी आर आल्सो रिमेम्बरिंग जॉन जाक रूसो, philosopher, writer and a composer as well. His political philosophy influenced the progress of Age of Enlightenment throughout Europe as well as aspects of the French Revolution, and this actually led to the development of modern political, economic and educational thought. So Rousseau's discourse on inequality, which argues that private property is the source of inequality and the social contract, outlines the basis for a legitimate political order and cornerstones in modern political and social thought. So Rousseau's sentimental novel, Julie, this was important to the development of romanticism in fiction, and Emile, or On Education, is an educational treatise on the place of the individual in society. And Rousseau's autobiographical writings, such as the posthumously published Confessions, this was completed in 1770. This initiated the modern autobiography, and the unfinished Reveries of the Solitary Walker exemplified the late 18th century age of sensibility and featured an increased focus on subjectivity and introspection that later characterized modern writing. I was telling you about Jean-Jacques Rousseau.
0: और आज जन्मदिन है भारत की ऊंची कूद के खिलाड़ी मरियप्पन थंगावेलू का। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पैरालंपिक खेलों में पुरुषों के ऊंची कूद मुकाबले में मरियप्पन थंगावेलू ने स्वर्ण और वरुण भाटी ने कांस्य पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया। मरियप्पन थंगावेलू ने जंप में भी सोना जीता था, जबकि भाटी ने एक जंप में लगाते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया था। थंगावेलू और भाटी की सफलता के बाद अभी तक के सभी पैरालंपिक खेलों में भारत के कुल पदकों की संख्या 10 है, जिसमें 3 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं।
1: टुडे वी आर आल्सो रिमेम्बरिंग पंडित चंद्रकांत कामत, हिंदुस्तानी क्लासिकल तबला प्लेयर ऑफ द बनारस तबला घराना। सो कामत स्टार्टेड एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट इन द नाटक or musical plays of his father's theatre company Anand Vilas, and began learning the tabla at a very young age. Learned from gurus Raghunath Shivalkar and Digambar Yamaji Kadam, and he also trained in Indian classical dance.

0: और श्रोताओं, आज ही के दिन जन्म हुआ था हिंदी के समाचार पत्र दैनिक आज के संस्थापक शिव प्रसाद गुप्त का। देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले क्रांतिकारियों को इनका समर्थन प्राप्त था। अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों के लिए भी शिव प्रसाद गुप्त ने कई बार जेल की सजा काटी। ये काशी विद्यापीठ के संस्थापक रहे। बनारस में भारत माता मंदिर का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। और एक और साहित्यकार का आज जन्मदिन है, अमर गोस्वामी का। वे मनोरमा और गंगा जैसी देश की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं से लंबे समय तक जुड़े रहे थे। अमर गोस्वामी साहित्यिक संस्था वैचारिकी के संस्थापक भी रहे। इन्होंने कई साहित्यिक पत्रिकाओं का संपादन किया और आज ही के दिन उन्होंने हमें सन 2012 में अलविदा कह दिया था।
1: टुडे वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग ड्रास ट्रम्पेटर पीट कैंडली, played with the big bands of Woody Herman as well and worked in recording and TV studios.

0: तो श्रोताओं, इसके साथ ही अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हमें कहना होगा आपसे अलविदा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप हमारे कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर।
1: वेल, वी थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन एंड वी होप यू हैव अ वंडरफुल डे अहेड। विद दैट,
0: नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक

0: दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी है। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है और किदाम्बी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का प्रतीक है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है।
2: Today we have a new national health policy.
3: आज हमारे पास एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है। यह रोग के उपचार से स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर एक परिवर्तनकारी कदम है, जिसमें बीमारी की रोकथाम को केंद्र में रखा गया है। भारत सरकार ने इन 12 वर्षों में कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें सबसे परिवर्तनकारी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम माना जाता है, जिसके दायरे में लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं।
2: 62 करोड़ इंडिविजुअल्स।
0: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बातचीत की और गिरोह में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुंबई अपर आयुक्त अशोक दुबे ने बताया कि पेपर लीक मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
4: महाराष्ट्र में जो TET की एग्जाम होने वाली है, उस एग्जाम में जो पेपर आने वाले थे, वो पेपर भिवंडी में बेचने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ के DCP जोन 2 पवन बंसोड़ इनको मिले थे। वहाँ पे 3 लोगों को टीम ने हिरासत में लिया। उनके पास से कुछ मोबाइल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ पैसे बरामद किए। कल इस्तेमाल होने वाले TET के 4 पेपर जब्त किए हैं। आगे की जाँच हमारी चल रही है।
0: इस घटना के बाद आज होने वाली TET परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रालय ने ये परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं।
5: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भारतीय श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल तो पहुंच गए, लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा और परमिट नहीं थे। इस कारण कई श्रद्धालुओं को यात्रा के समय समस्याएं पेश आई हैं और

0: उन्होंने मंत्रालय से मदद मांगी है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रद्धालु सभी जरूरी यात्रा दस्तावेज मिलने के बाद ही यात्रा शुरू करें। उसने कहा है कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर परमिट या वीजा मिल जाएगा, क्योंकि इससे यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं से कहा है कि यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है। मंत्रालय का कहना है कि इस सलाह का उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और परेशानी से मुक्त बनाना है। रोहन के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: चार धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के पुरानी मंडी स्थित श्रीराम मंदिर अमरनाथ यात्री आधार शिविर से में साधुओं का आगमन शुरू हो गया है। इससे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने बहुस्तरीय व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का अभ्यास किया। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी के साथ परिचर्चा प्रसारित कर रहे हैं। अंबिकापुर नगर निगम द्वारा संचालित इस कैफे में प्लास्टिक कचरे के बदले में भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
2: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
3: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
4: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया। सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया, उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है।
5: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित किया जाएगा। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का बाग अभयारण्य में बाघों के पुनर्स्थापना के 18 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों और प्रकृति प्रेमियों को बधाई दी है। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। सेना ने कहा कि उसने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत कीकुक पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने के क्षमताओं को निशाना बनाया। वेनेजुएला में भूकंप में से मरने वालों की संख्या 1,430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ है। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज सुबह कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही कांगो की टीम इतिहास रचते हुए पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में पहुंच गई है। एक अन्य मुकाबले में आज पुर्तगाल और कोलंबिया के बीच मैच बिना कोई गोल के ड्रॉ पर समाप्त हुआ। अब राउंड ऑफ 32 में शुक्रवार को पुर्तगाल का सामना क्रोएशिया से होगा, जबकि शनिवार को कोलंबिया और घाना आमने सामने होंगे। इससे पहले अमेरिका के न्यूजर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम और हैरी केन के 1-1 गोल की बदौलत आज इंग्लैंड ने भी पनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के एक अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से पराजित किया। क्रोएशिया ग्रुप ए में ग्रुप में दूसरे, जबकि घाना तीसरे स्थान पर है। और अब खेल की अन्य खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
6: जी लवली, इन खेल खबरों में शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। भारत के किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकोमोतो को 22-20, 15-21 और 21-19 से हराया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सूली यांग के साथ होगा। महिला सिंगल्स में भारत की देविका सिहाग सेमीफाइनल मुकाबले में डेनमार्क की लाइने क्रिस्टोफर सेन से हार गईं। उधर क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में आज ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के अपने अंतिम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और अगर बात करें शतरंज की बाजी की, तो गोवा के 14

0: वर्षीय एथनवाज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित साराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज तेज वर्षा तथा कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले दो दिन में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले दो से तीन दिन में आगे बढ़ सकता है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवा का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार में आज लू चलने के आसार हैं। अमेरिका के वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडार, वाणिज्य विभाग तथा डुपोंट सर्कल बिजनेस इंप्रूवमेंट डिस्ट्रिक्ट के सहयोग से वार्षिक आम महोत्सव का आयोजन किया। इसमें अल्फांसो, केसर, दशहरी, लंगड़ा और बैंगनपल्ली जैसी लोकप्रिय भारतीय आम की किस्मों का प्रदर्शन किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा को अमर उजाला ने मैत्री संबंध बताते हुए लिखा है, हिंद महासागर पर बढ़ेगा सहयोग। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सेशल्स में प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया गस्ती पोत सौंपा। पत्र आगे लिखता है, श्री मोदी 194 साल के कछुए जोनाथन से मिले। अयोध्या में श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में कुछ और लोगों के इस्तीफे की खबर हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने ट्रस्ट की तरफ से इस आश्वासन को दिया है कि श्रद्धालुओं के मूल्यवान समर्पण सुरक्षित हैं। अमेरिका और ईरान के बीच भिड़ंत शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता होने के 10 दिन के भीतर ही फिर से सैन्य झड़पें शुरू हो जाना पश्चिम एशिया और साथ ही विश्व के लिए बुरी खबर है। अफगानिस्तान में कल आए भूकंप की खबरें सभी अखबारों में हैं। देशबंधु कहता है, दिल्ली एनसीआर तक डोली धरती। उधर राजस्थान पत्रिका ने वेनेजुएला में भूकंप के बाद तबाही से जीवन की किरण शीर्षक से लिखा है, मलबे से 18 दिन के नवजात को निकाला, राहत और बचाव कार्य तेज। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया, देशबंधु की खबर है। पत्र ने इसे भारत की अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए लिखा है, अब गगनयान मिशन की तैयारियां तेज। अमर उजाला की खास खबर है, सितंबर में रोशन हो जाएगा लद्दाख, सियाचिन तक पहुंची बिजली। पत्र ने इसे बुनियादी ढांचे और स्थानीय विकास के मोर्चे पर मील का पत्थर बताते हुए लिखा है कि इससे सेना और सुरक्षा बलों को मिलेगी बड़ी ताकत। राजधानी दिल्ली में शनिवार को भीषण गर्मी और उमस पर हिंदुस्तान कहता है, 51 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसी तपिश महसूस हुई। दैनिक भास्कर की खास खबर है, इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच बाजारों में छाछ लस्सी अपना बाजार मजबूती से बना रहे हैं। पत्र कहता है, अब कोल्ड ड्रिंक्स पीछे छाछ और लस्सी की बिक्री में चौगुनी वृद्धि।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए और किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: moleque!
1: ஒலித்த அந்த பாடலோடு நிறைவு பெற்றது திரைகானம்.

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का प्रतीक है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री आज 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वो सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रालय ने यह परामर्श उन

0: भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है, जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भारतीय श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल तो पहुंच गए, लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा और परमिट नहीं थे। इस कारण कई श्रद्धालुओं को यात्रा के समय समस्याएं पेश आई हैं और उन्होंने मंत्रालय से मदद मांगी है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रद्धालु सभी जरूरी यात्रा दस्तावेज मिलने के बाद ही यात्रा शुरू करें। उसने कहा है कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर परमिट या वीजा मिल जाएगा, क्योंकि इससे यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं कहा है कि यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है। मंत्रालय का कहना है कि इस सलाह का उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और परेशानी से मुक्त बनाना है। रोहन के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के एक महत्वपूर्ण दौर में श्री राव ने भारत की प्रगति में अमूल्य योगदान दिया। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की भी खबर है। लागुएरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत कीकू पर हुए हमले के जवाब में अमरीका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। सेंट्रल कमान ने कहा कि ईरान ने ड्रोन से तेल टैंकर कीकू पर हमला किया। ये टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहा था और इसमें 20 लाख बैरल से अधिक कच्चा तेल था। अमेरिका ने कहा है कि ईरान ने तेल पोत पर हमला करके संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। उधर ईरान की सरकारी मीडिया ने होर्मुज के ठीक उत्तर में विस्फोटों की सूचना दी है। किदाम्बी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमरीका में कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान की युदाई ओकिमोतू को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीन ताइपे के सू ली यांग से होगा। महिला सिंगल्स में भारत की देविका सिहाग सेमीफाइनल मुकाबले में डेनमार्क की लाइने क्रिस्टोफरसन से हार गई। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर ग्रुप ए के अंतिम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। वहीं पुरुष टी20 क्रिकेट में आज बेलफास्ट में भारत का सामना मेजबान।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Seychelles Patrick Hermini today. Both leaders will review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. We have a report.
3: Today, Prime Minister Modi is scheduled to address the National Assembly of Seychelles and interact with members of Indian diaspora. Later, Prime Minister Modi will participate in the National Day celebration at Roche-Kemen. The ministry said that a contingent of the Indian Defence Forces, along with two Indian Navy ships, will also take part in the celebrations. Prime Minister Narendra Modi is on a three-day visit to Seychelles to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. This visit reaffirms the strong and enduring friendship between India and Seychelles and strengthens the shared commitment of both nations to enhance bilateral ties across all sectors. Akshit Vaidyana, Akashwani News, Delhi.
2: The Prime Minister reached Victoria yesterday on a three-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. It will be the 135th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashwani at Doordarshan Network, the AIR News website and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast.

0: Union Home and Cooperation Minister Amit Shah, who is on a three-day visit to Gujarat, will officially launch the PM Family Care Tracker pilot project in Gandhinagar this evening. This new initiative is aimed at improving healthcare tracking and welfare accessibility for families. Prime Minister Narendra Modi and Defence Minister Rajnath Singh paid tributes to India's former Prime Minister P.V. Narasimha Rao on his birth anniversary today. In a social media post, Mr. Modi remembered former Prime Minister for his enduring contributions to India's progress during a critical phase of the nation's history. He said that Mr. Rao earned recognition as a naval administrator and was also a distinguished scholar with immense knowledge and a deep understanding of India's diverse culture. The US military said it struck multiple targets in Iran for the second consecutive day at the direction of President Donald Trump as a fragile ceasefire came under renewed strain. In a post on social media, US Central Command said that American military aircraft targeted Iranian military surveillance infrastructure, communication systems, air defense sites, drone storage facilities, and mine layer capabilities in response to an attack on a merchant vessel on Friday. Meanwhile, Iran's military spokesperson Ibrahim al-Fikr stated that Iran also targeted U.S. infrastructure with missiles and drones in Kuwait and Bahrain. In a social media post, al-Fikr claimed that Iranian forces struck 8 U.S. military sites and related infrastructure, including Ali al-Salem Air Base in Kuwait and facilities associated with the U.S. 5th Fleet in Bahrain. The India Meteorological Department, IMD, has issued a red colour warning for a very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Assam, Meghalaya, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. The weather agency has also forecast thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Andhra Pradesh, East Rajasthan, East Uttar Pradesh, Jharkhand, Madhya Pradesh and Maharashtra till tomorrow. India's Kidambi Srikant advanced to the men's singles final of the US Open Badminton Championships at the Titan Gym in California today. Srikant defeated Japan's Yudai Ukimoto 22-20, 15-21, 21-19 in a hard-fought semi-final. He will face Su Yi Yang of Chinese Taipei in the final. In the FIFA World Cup, DR Congo created history by reaching the knockout stage of the FIFA World Cup for the first time after defeating Uzbekistan 3-1 in Group K clash at Atlanta Stadium this morning. Yohan Visa scored twice in the second half while Fiston Mayel added another goal to seal the victory. In another Group K fixture, Portugal and Colombia played out a goalless draw at Miami Stadium in Florida this morning. In the round of 32, Portugal will face Croatia in Toronto on Friday. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं लवलीन निगम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों से सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी है अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हुई और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर इतिहास रचते हुए पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ बातचीत करेंगे दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे एक रिपोर्ट
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का है साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने

0: की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कंपनियों से कहा है कि वे यूनाइटेड किंगडम की कंपनियों के साथ अपने संबंध मजबूत करें ताकि भारत यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत मिल रहे नए मौकों को लगातार बिजनेस ग्रोथ में बदला जा सके। उन्होंने लंदन में भारत यूके पार्टनर्स इन प्रोग्रेस बिजनेस प्लेनरी की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इस प्लेनरी ने दोनों देशों के प्रमुख उद्योग प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को मजबूत करने के लिए CETA का क्रांतिकारी फ्रेमवर्क के तौर पर स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध पर जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं।
2: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भारतीय श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल तो पहुंच गए, लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा और परमिट नहीं थे। इस कारण कई श्रद्धालुओं को यात्रा के समय समस्याएं पेश आई हैं और उन्होंने मंत्रालय से मदद मांगी है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रद्धालु सभी जरूरी यात्रा दस्तावेज मिलने के बाद ही यात्रा शुरू करें। उसने कहा है कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर परमिट या वीजा मिल जाएगा, क्योंकि इससे यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं कहा है कि यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है। मंत्रालय का कहना है कि इस सलाह का उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और परेशानी से मुक्त बनाना है। रोहन के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्रालय ने मीडिया सोशल मीडिया पर प्रसार हो रही उन खबरों का खंडन किया है जिनमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 सैनिकों की शहादत को हाल ही में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए जाने को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि जल्द से जल्द शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इन सैनिकों को वीरता पुरस्कार भी प्रदान किए गए थे जिनकी घोषणा पिछले वर्ष 14 अगस्त को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में की गई थी। विश्व दर्पण समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। सेना ने कहा कि उसने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। एक रिपोर्ट।
3: इस हमले से दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत कीकू पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। सेंट्रल कमान ने कहा कि ईरान ने ड्रोन से तेल टैंकर कीकू पर हमला किया। ये टैंकर होर्मुज़ जल डमरू मध्य से गुजर रहा था और इसमें 20 लाख बैरल से अधिक कच्चा तेल था। अमेरिका ने कहा है कि ईरान ने तेल पोत पर हमला करके संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। उधर ईरान के सरकारी मीडिया ने होर्मुज के ठीक उत्तर में विस्फोटों की सूचना दी है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं फरहत नाज।
1: वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे जिसमें काफी नुकसान हुआ था। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। जापान में आज सुबह 6.1 की तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र इवाते प्रांत के तट से दूर लगभग 40 किलोमीटर की गहराई पर था। सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। तत्काल कोई नुकसान या किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि तूफान के दौरान आए भूकंपों की श्रृंखला से भूस्खलन की आशंका बढ़ गई है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने चेन्नई बंदरगाह से भारत आ रहे अवैध पटाखों की तस्करी के दो प्रयासों को नाकाम किया है। ये पटाखे चीन में बनाए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि अधिकारियों ने चीन से आ रहे दो कंटेनरों को जब्त किया जिनमें ट्रॉली बैग और स्प्रेयर लदे होने की सूचना दी गई थी, लेकिन जांच में पाया गया कि कंटेनरों में लगभग 46,000 पटाखे छिपाए गए थे। एक अन्य मामले में चेन्नई सीमा शुल्क विभाग ने चीन के पटाखों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भी पर्दाफाश किया है। अमेरिका के वाशिंगटन में भारतीय दूतावास ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपेडार, वाणिज्य विभाग तथा डूपोंट सर्कल बिजनेस इंप्रूवमेंट डिस्ट्रिक्ट के सहयोग से वार्षिक आम महोत्सव का आयोजन किया। इसमें अल्फांसो, केसर, दशहरी, लंगड़ा और बैंगनपली जैसी लोकप्रिय भारतीय आम की किस्मों का प्रदर्शन किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: महोत्सव में भारतीय आमों का

0: स्वाद चखने के लिए बड़ी संख्या में लोग कतारों में खड़े नजर आए। इनमें से कई ने अमेरिका में प्रीमियम भारतीय किस्मों की व्यापक उपलब्धता की मांग की। भारतीय राजदूत विनय मोहन पात्रा ने कहा कि इस वार्षिक महोत्सव का पिछले कुछ वर्षों में तेजी से आकर्षण बढ़ा है। भारत विश्व में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक है और इसका अमेरिका को होने वाला निर्यात तेजी से बढ़ रहा है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: किदाम्बी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमरीका में कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकुमोतो को 22-20 15-21 21-19 से हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स के अन्य सेमीफाइनल मुकाबले में भारत के रौनक चौहान और महिला सिंगल सेमीफाइनल में देविका सिहाग हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर ग्रुप ए के अंतिम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। पुरुष टी20 क्रिकेट में आज बेलफास्ट में भारत का सामना मेजबान आयरलैंड से होना है। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 6 बजे से खेला जाएगा। गोवा के 14 वर्षीय एथनवाज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित साराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉम हासिल कर लिया है और भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इस उपलब्धि के साथ एथेन अनुराग महामल और लियोन मेंडोका के बाद गोवा से तीसरे ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज सुबह कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही कांगो की टीम इतिहास रचते हुए पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में पहुंच गई है। एक अन्य मुकाबले में आज पुर्तगाल और कोलंबिया के बीच मैच बिना कोई गोल के ड्रॉ पर समाप्त हुआ। अब राउंड ऑफ 32 में शुक्रवार को पुर्तगाल का सामना क्रोएशिया से होगा जबकि शनिवार को कोलंबिया और घाना आमने सामने होंगे। इससे पहले अमरीका के न्यूजर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगहैम और हैरी केन के एक एक गोल के बदौलत आज इंग्लैंड ने भी पनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से हराया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे नंबर पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों से सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी है। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1,430 हुई और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर इतिहास रचते हुए पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
4: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
5: कोई बोले राम राम।
4: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किडबैग चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर।
0: चले
1: ले आ गया नया किडबैग।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
6: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सब से जुड़कर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। 2026 का आधा साल बीतने को है। इन 6 महीनों में हमने मन की बात में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती हैं। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हैं। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी और यह कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की यह ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है और इस जन भागीदारी का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए

खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे, वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहां नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम, यानि केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है, 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11,00,000 परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है।

कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है। हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है। और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती। और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है। उस पक्षी का नाम है हरगीला। हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हरगीला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हरगीला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने ये सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगीला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगीला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं, जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है। और

इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक से अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए एआई इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य घड़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों,

आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत, संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं, वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्मा शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये है मेघालय के रूट ब्रिज। रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है। इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती हैं। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। यह हमारे देश की, इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती हैं। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा, इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है।

उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट ब्रिजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे, लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है कौन उसे साफ करता है। ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा, लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया, ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको ब्रिक्स में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको ब्रिक्स का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो, वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है

0: दें। और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदें। साथियों, मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती हैं। इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है, हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं, हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर जरूर गंभीरता से सोचेंगे और देश हित में कदम भी उठाएंगे। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के लोग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे छोटे बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ मिले तो कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों के बारे में मुझे जरूर लिखते रहिए, अपने विचार और अपने सुझाव भेजते रहिए। हो सकता है आपके आसपास की कोई छोटी सी पहल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाए। अगले महीने हम फिर मिलेंगे, देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। और हाँ, जल संचय तो करना ही करना है, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन, ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: आकाशवाणी मन की बात பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் வானொலி வழி தம் கருத்துக்களை நாட்டு மக்களுடன் பகிர்ந்து கொண்ட நிகழ்ச்சியை இதுவரை டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்டீர்கள். தொடர்வது மனதின் குரல். பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் சற்று முன் நாட்டு மக்களுக்கு ஆற்றிய மன் கி பாத் உரையின் தமிழாக்கம்.
3: எனதருமை நாட்டு மக்களே, வணக்கம். மனதின் குரலில் மீண்டும் ஒருமுறை உங்களோடு இணைவது மிகுந்த மகிழ்ச்சியை அளிக்கிறது. 2026 ஆண்டின் முதல் பாதி நிறைவை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது. கடந்த இந்த 6 மாதங்களில் நாம் மனதின் குரலிலே நாட்டு மக்களின் அநேக சாதனைகள் குறித்து விவாதங்களில் ஈடுபட்டிருக்கிறோம். ஜூன் மாதத்தில் கூட தேசத்தின் சில சாதனைகள் அரங்கேறியிருக்கின்றன. இவை நாட்டு மக்களை பெருமிதத்தில் ஆழ்த்தியிருக்கின்றன. இந்த வெற்றிகள் தேசத்தின் பாதுகாப்பு மற்றும் தற்சார்போடு தொடர்புடையவை. தற்போதுதான் கோல்கத்தாவிலே கடற்படையோடு தொடர்புடைய ஒரு நிகழ்ச்சியில் பங்கு கொள்ளும் சந்தர்ப்பம் எனக்கு வாய்த்தது. அங்கே INS தூனாகிரி, INS சன்ஷோதக் மற்றும் INS அக்ரே ஆகிய போர்க்கப்பல்கள் கடற்படையில் இணைக்கப்பட்டன. இந்த கப்பல்களின் வடிவமைப்பும் தயாரிப்பும் அனைத்துமே நம் நாட்டிலேயே ஆனவை.

0: நேயர்களே, பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இன்று காலை 11 மணிக்கு ஆற்றிய மன் கி பாத் நிகழ்ச்சியின் தமிழாக்கம் மனதின் குரல் இன்று இரவு 8 மணிக்கு மீண்டும் ஒலிபரப்பாகும். இதனை தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் உள்ள அனைத்து அலைவரிசைகள் DTH மற்றும் DRM சேவைகளிலும் கேட்கலாம். மீண்டும் நினைவூட்டுகிறோம் நேயர்களே, மனதின் குரல் இன்று இரவு 8 மணிக்கு.
1: சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
2: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே விஷால் சர்மா. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जून के महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
3: एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
2: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण किया गया। ये तीनों युद्धपोत डिजाइन से लेकर निर्माण तक पूरी तरह से स्वदेशी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जून के महीने में ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने जमीन से हमले के लिए लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि भारत समुद्र से लेकर आकाश तक लगातार अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की, जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार यह आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
3: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
2: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
3: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था, कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता जारी है। दोनों नेता भारत सेशल्स संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इससे पहले स्टेट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और IIT खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक

0: विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान है। किदाम्बी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। इधर बेलफास्ट में पुरुष टी20 क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi has highlighted that India achieved major success in the aviation sector in June with the Made in India C-295 aircraft completing its maiden flight. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani today, the Prime Minister shared that 40 such aircraft are being manufactured in India. Mr. Modi exuded pride that India achieved success linked to the country's security and self-reliance this month. He attended an event in Kolkata recently where INS Dunagiri, INS Sanchodhak and INS Agra were inducted into the Indian Navy's fleet. The Prime Minister was pleased to note that everything is indigenous from the design to the manufacturing of these ships. The Prime Minister stated that the DRDO also successfully tested an indigenous long-range land attack cruise missile. He noted that India is becoming increasingly secure and self-reliant from the seas to the skies. The Prime Minister also spoke about International Yog Day, which saw the entire world join hands with India's efforts. This time, diverse yoga events were held at over 2,500 locations across the globe. He mentioned the World Yogasan Championship held in Ahmedabad, where India topped the medals tally.
2: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: Prime Minister Modi stated that the power of public participation in nation building is a tremendous asset for India. He said this public participation was seen again after he urged countrymen on a few points in view of the prevailing warlike situation in West Asia.
2: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: The Prime Minister also spoke about the importance of the Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, which provides an insurance cover of 2 lakh rupees to a person's family in the event of an unfortunate death. On the subject of cleanliness, Mr. Modi gave the example of some women from Byavara in Rajgarh district of Madhya Pradesh who resolved to remove plastic waste scattered around the area. Gradually, this effort expanded and the collected plastic began to be converted into eco bricks. Today, these eco bricks are being used to beautify public spaces. Concluding his address, the Prime Minister stressed on water conservation, saying that every single drop of rainwater must be saved. He said the momentum of Catch the Rain campaign should not slacken. In some other news, bilateral talks are underway between Prime Minister Narendra Modi and President of Seychelles, Patrick Hermione, in Victoria, the capital city of Seychelles. Both leaders will review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. Earlier, he was given a guard of honor at the State House with President Hermione. Prime Minister Modi is scheduled to address the National Assembly of Seychelles and interact with members of the Indian diaspora. Later, he will attend the Golden Jubilee celebrations of

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஆங்கிலத்திலும் ஹிந்தியிலும் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: குட் ஆஃப்டர்நூன், திஸ் இஸ் ஆகாஷ்வாணி அண்ட் ஐ எம் சாய்ரம் முஜ்தபா வித் தி மிட் டே நியூஸ். The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India is becoming increasingly secure and self-reliant from seas to the skies. With focus on indigenous defense production, highlights completion of maiden flight of C-295 aircraft manufactured in the country. In his Mann Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi expresses gratitude to the citizens of the country for actively supporting his recent appeal to avoid buying gold, foreign travels and promoting carpooling for some time. India and Seychelles signed agreements on various subjects including health, agriculture, finance and space following delegation-level talks in Victoria. Government asked Indian citizens not to undertake Kailash Mansarovar Yatra without all required travel documents. Security situation in West Asia deteriorates sharply with both US and Iran launching fresh military strikes against each other. And in ICC Women's T20 World Cup, India to take on Australia in their final Group A match in London today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that India achieved major success in the aviation sector in June with the Made in India C-295 aircraft completing its maiden flight. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani, the Prime Minister shared that 40 such aircraft are being manufactured in India.
2: जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई. C-295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं. इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है. आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है.
1: Mr. Modi exuded pride that India has achieved success linked to the country's security and self-reliance this month. He attended an event in Kolkata recently where INS Dhunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra were inducted into the Indian Navy's fleet. Mr. Modi noted that India is becoming increasingly secure and self-reliant from the seas to the skies.
2: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया. इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है. इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है. इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है.
1: The Prime Minister also spoke about International Yoga Day, which saw the entire world join hands with India's efforts. He mentioned the World Yogasan Championship held in Ahmedabad, where India won a total of 114 medals in this event, including 102 gold. Prime Minister Modi stated that the power of public participation in nation building is a tremendous asset for India. He said this public participation was seen again after he urged countrymen on a few points in view of the prevailing warlike situation in West Asia.
2: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें. लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें. लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी. किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था. मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं.
1: मिस्टर मोदी

0: We also cited the example of the Petkar family in Nanded, Maharashtra, who arranged accident insurance for approximately 3,500 villagers. Each individual was provided with an insurance cover of 1 lakh rupees. The Prime Minister shared that the government is extending this protective shield to crores of families across the country.
1: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है. उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है. ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपये का बीमा कवर देती है. इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है.
0: In this episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Modi also touched upon the subject of superstition. He noted that superstition has been deeply ingrained in human society for millennia. Mr. Modi shared how the rare Hargela bird found in Assam was considered inauspicious in certain parts of the state. The Prime Minister stated that it was during that time that biologist Purnima Devi Barman resolved to change the misconceptions deeply rooted in people's minds.
1: हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है. ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था. फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ. हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगीला को बचाने के लिए आगे आई. आज उन्हें हरगीला आर्मी के नाम से जाना जाता है. इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ कर के रहे.
0: Touching upon the topic of sports, Prime Minister Modi expressed happiness that the number of young people in the country who are both playing sports is rapidly growing. In today's Mann Ki Baat, Prime Minister Modi also spoke about preserving people's creativity in the age of technology and AI. He said Nalanda University has found a solution to this and is now shaping India's destiny in a new avatar.
1: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है. दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है. मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया.
0: Mr. Modi highlighted other significant efforts are underway to prepare the youth for new technology while keeping them rooted in their heritage. The Central Sanskrit University in Delhi is launching a B.Tech program in artificial intelligence and data science. Prime Minister Modi expressed happiness that Indian culture is reaching various corners of the globe today. He spoke of an initiative in the Dominican Republic, which has an Indian population of around 100.
1: कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है. वहाँ भारतीयों की संख्या करीब 100 है. भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहाँ हो रहा है. वहाँ स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है. इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना. टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं. भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है.
0: द प्राइम मिनिस्टर मेंशन्ड मेघालय'स रूट ब्रिजेस, सेइंग दीज रूट ब्रिजेस टेक डेकेड्स टू टेक शेप. ही शेयर दैट इंडिया हैज नाउ अप्लाइड टू हैव मेघालय'स रूट ब्रिजेस इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क. On the subject of cleanliness, Mr. Modi gave the example of some women from Byavara in Rajgarh district of Madhya Pradesh. The women resolved to remove plastic waste scattered around the area. Mr. Modi also urged people to ensure that the idol of Ganpati Bappa for Ganesh Utsav is made from the soil of this country and crafted by the hands of local potters and artisans. He also urged those who make Ganesh idols to prioritize clay idols. Concluding his address, the Prime Minister stressed on water conservation, saying that every single drop of rainwater must be saved. He said the momentum of Catch the Rain campaign should not slacken. In some more news, Prime Minister Narendra Modi and President of Seychelles Patrick Hermione held bilateral talks at Victoria this afternoon. Both leaders reviewed the full spectrum of bilateral cooperation and exchanged views on regional and international issues of mutual interest. Earlier, he was given a guard of honor at the State House, with President Hermione also present.

0: foreign travels and promoting carpooling for some time. India and Seychelles signed agreements on various subjects including health, agriculture, finance and space following delegation-level talks in Victoria. Government asked Indian citizens not to undertake Kailash Mansarovar Yatra without all required travel documents. Security situation in West Asia deteriorates sharply with both US and Iran launching fresh military strikes against each other. And an ICC Women's T20 World Cup, India to take on Australia in the final Group A match in London today. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। अमेरिका और ईरान के बीच नए सैन्य हमलों से पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति बिगड़ी और लंदन में महिला T20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
2: C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया और DRDO ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
2: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
1: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार यह आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
2: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
2: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। लोगों से कार पूलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में पेठकर परिवार की चर्चा की जिसने लगभग 3500 ग्रामीणों का दुर्घटना बीमा कराया है। इनमें

0: से प्रत्येक व्यक्ति को 1 लाख रुपए का बीमा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना हृदय को छूने वाली है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अब तक 3,700 करोड़ रुपए से अधिक और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है।
1: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 1 साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज में अंधविश्वास सदियों से गहरे बैठा हुआ है। श्री मोदी ने बताया कि असम में अशुभ माने जाने वाले हरगिला पक्षी को बचाने के लिए हजारों महिलाएं सामने आई हैं।
1: हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे।
0: प्रधानमंत्री ने नागालैंड बेबी लीग और नागालैंड महिला फुटसल लीग की चर्चा की।
1: देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। नागालैंड के 2 ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग, जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित करती है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है।
1: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया।
0: प्रधानमंत्री ने दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के आधुनिक प्रयास की चर्चा की।
1: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
0: श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति दुनिया भर में पहुंच रही है।
1: कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है, वहाँ भारतीयों की संख्या करीब 100 है। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहाँ हो रहा है। वहाँ स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका ये प्रयास बहुत प्रेरक है।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। अंत में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंद महासागर की सुरक्षा और समृद्धि भारत और सेशेल्स की साझा जिम्मेदारी है। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त

0: संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े।
1: मेरी यात्रा ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है जब सेशल अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है और हम भारत सेशल राजनयिक संबंधों की भी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इन 50 वर्षों की यात्रा में हमने मित्रता को विश्वास में, विश्वास को सहयोग में और सहयोग को जन कल्याण में बदला है। हिंद महासागर ने भारत और सेशेल के संबंधों को सींचा है।
0: दोनों देशों के बीच कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान भी हुआ। सेशेल्स के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके दूरदर्शी नेतृत्व तथा सतत विकास और जलवायु लचीलेपन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे, भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने कहा कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत किको पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की मुख्य भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
2: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और ये आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
0: पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। भारत ग्रुप में दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना होगा। उधर बेलफास्ट में दूसरे टी20 पुरुष क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। दो मैचों की श्रृंखला में आयरलैंड ने पहले मैच में भारत को 34 रन से हराया था। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी लगातार 7 विश्व कप मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आज अंतिम मुकाबले में अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराया। इसके साथ ही विश्व कप में उनके गोलों की संख्या 19 हो गई है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली

उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा और लंदन में महिला T20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप में

0: திரைக்காலம் நிறைவு பெற்றது. தொடர்வது இந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள், டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர் ஃபிரோசி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज सेशल्स की राजकीय यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया. सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक

0: खरमाइनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध सभी देशों को समर्पित किया। प्रधानमंत्री मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी ने आज राजधानी विक्टोरिया में आपसी सहयोग की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया। दोनों देशों के बीच कृषि, वित्त, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और डिजिटल सहयोग सहित कई क्षेत्रों में समझौते हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स हिंद महासागर को साझा विरासत मानते हैं और इसकी सुरक्षा, स्थिरता तथा समृद्धि दोनों देशों की साझा जिम्मेदारी है। सेशल्स के साथ यूपीआई लागू करने का समझौता भी हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे, भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है।
1: C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अब तक 3,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय के एक नए अवतार में भारत का भाग्य गढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परम्परा को फिर से जीवित किया है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत में गांवों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में उन्होंने कहा कि विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। श्री चौहान ने आश्वस्त किया है कि ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण के लिए पंचायतों को ठोस वित्तीय सहायता मिलती रहेगी। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। ये परामर्श उन भारतीय नागरिकों के अनुरोध के बाद जारी किया गया है जो निजी टूर ऑपरेटर्स के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। ये कार्रवाई शुक्रवार को हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एक तेल टैंकर पर हुए ड्रोन हमले के जवाब में की गई। और लंदन के लॉर्ड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। भारत ग्रुप ए में दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: फिर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक-एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: for reserved categories. The last date for submission of applications is 19 July 2026. While candidates residing in remote areas such as Jammu and Kashmir, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Lahore and Spiti may apply up to 29 July 2026. Detailed information and application procedures available on the official NFR website. For details, do refer to www.nfr.indianrailways.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: Namaskar. रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा. आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित. मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन. ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, पाइप फिटर, स्ट्रक्चरल फिटर, फिटर स्ट्रक्चरल, ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन, ICTSM, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग, पेंटर जनरल, पाइप फिटर, वेल्डर, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्राम असिस्टेंट, वुडवर्क टेक्नीशियन और वेल्डर. ये रिक्तियां वर्ग क और वर्ग ख दोनों के लिए हैं. वर्ग ग की रिक्तियां हैं रिगर और वेल्डर. अधिक जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट mazgaondocs.in. वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं करियर अनुभाग में अप्रेंटिस पर उपलब्ध नियम और विनियम. एनटीपीसी लिमिटेड भारत सरकार का उद्यम आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन. विजिटिंग कंसल्टेंट डेंटल और विजिटिंग कंसल्टेंट ईएनटी. विजिटिंग कंसल्टेंट्स की नियुक्ति 6 महीने की अवधि के लिए होगी जिसे प्रदर्शन के आधार पर अगले 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है. इच्छुक उम्मीदवार सीधे साक्षात्कार के लिए दिनांक 6 जुलाई 2026 को प्रातः 9 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच विंध्य अस्पताल एनटीपीसी विंध्याचल जिला सिंगरौली में उपस्थित हो सकते हैं. दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत अग्रणी महापत्तनों में से एक है. ये प्राधिकरण इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है. सहायक प्रबंधक ड्रेजर टग्स और सहायक प्रबंधक फ्लोटिंग क्राफ्ट्स. संपूर्ण विज्ञापन, आवेदन पत्र और अन्य विवरण के लिए देखिए दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण की वेबसाइट www.deendayalport.gov.in. आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं. आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही. कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे. तब तक के लिए नमस्कार.
2: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 1:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का। परिक्रमा में आपका स्वागत है और आज के सफर में आपके साथ हूं मैं चारू सक्सेना और मेरे साथ हैं मेरे से

0: योगी अभिषेक मुखोपाध्याय। हाय अभिषेक।
1: हेलो चारू, हाउ आर यू?
0: या फाइन अभिषेक। देखो श्रोताओं को हम बता दें कि इस आधे घंटे के कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नज़र और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
1: एब्सोल्युटली। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून इन टू परिक्रमा ऑन आकाशवाणी गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड विद मी टुडे इज माय को-होस्ट चारू सक्सेना। Well, listeners, the FIFA World Cup football is underway, and this, of course, is a once every 4 years spectacle that unites the globe. And most of us are staying up late to watch the live matches, and others are catching up on the match highlights. So, Charu, here are three reasons why you should watch this World Cup. Well, firstly, it offers unmatched

0: every 4 years spectacle that unites the globe, and most of us are staying up late to watch the live matches, and others are catching up on the match highlights. So, Charu, here are three reasons why you should watch this World Cup. Well, firstly, it offers unmatched national or team pride. Secondly, it offers many historic moments that transcend sports. And lastly, it is a rare opportunity to see the world's absolute best players compete at the highest level of international competition. And Charu, speaking of players here, six players to watch out in this World Cup. Kylian Mbappe from France, who is regarded as one of the most explosive and lethal forwards of the game. Then there's Vinicius Junior from Brazil, known for his dribbling skills. From England, we have Harry Kane, the talismanic striker, an incredibly prolific goal scorer. Then, of course, is Erling Haaland from Norway, who is a physical and technical marvel with tremendous raw power and finishing ability. And then the two next-generation talents, Jude Bellingham from England, who is a complete midfielder, and Lamine Yamal from Spain, who has fearless creativity and maturity beyond his years. So, Charu, six standout footballers and listeners you should watch close, whom your listeners should watch closely in this World Cup. And Charu, we have lots coming up for our listeners in the program, but first we begin with the news headlines at this hour. Prime Minister Narendra Modi says India is becoming increasingly secure and self-reliant from seas to the skies, with focus on indigenous defense production, highlights completion of maiden flight of C-295 aircraft manufactured in the country.
1: आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा ना करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया.
0: Indian Seychelles signed agreements on various subjects including health, agriculture, finance and space following delegation level talks in Victoria.
1: सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा.
0: Security situation in West Asia deteriorates sharply, with both US and Iran launching fresh military strikes against each other.
1: और लंदन में महिला T20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा.
0: And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about PM's Mann Ki Baat program. Well, Charu, every month millions of Indians tune in to Mann Ki Baat, not just to hear an address from the Prime Minister, but to discover inspiring stories from every corner of the country. Stories of ordinary people doing extraordinary things of innovation, tradition, service and community spirit that often go unnoticed.
1: अभिषेक, देखो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश को संबोधित किया और उन्होंने ऐसी कई शानदार कहानियां साझा की जो भारत की तरक्की और लोगों की भागीदारी की ताकत को दिखाती है.
0: Yes, Charu, can a nation become stronger only through missiles and machines or only through industries and investments, or does its real strength lie in the hands of people who choose to do the right thing every single day? Well, today let's take a journey through stories that prove one simple truth, that when 140 crore Indians move together, even the impossible begins to look possible.
1: बिल्कुल, पता है अभिषेक, देखो कुछ फ्लाइट्स यात्रियों को ले जाती हैं, तो कुछ कार्गो को, और कुछ फ्लाइट्स ऐसी भी होती हैं जो पूरे देश की उम्मीदों को लेकर उड़ती हैं. किसी विमान के उड़ान भरने का देश की तरक्की से क्या लेना देना है? असल में बहुत कुछ, क्योंकि जब इस महीने मेड इन इंडिया C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान भरी, तो ये सिर्फ एक सफल टेस्ट नहीं था, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और मजबूत कदम था.
0: बट चारू, इंडियाज़ सक्सेस दिस मंथ वाज़न्ट लिमिटेड टू द स्काइज़, इट आल्सो एकोड अक्रॉस द सीज़, एंड रिसेंटली थ्री इम्प्रेसिव नेवल प्लेटफॉर्म्स, INS Dunagiri, INS Sanshodak, and INS Agra, joined the Indian Navy. And the most fascinating part is that everything from the design to the construction is completely indigenous. Now think about how far we have come. There was a time when building such advanced defense systems seemed like a distant dream, but today they are becoming a reality.
1: बिल्कुल, देखो जून का महीना भारत के लिए जश्न मनाने का एक और कारण लेकर आया है. जब भारत ने DRDO के वैज्ञानिकों और भारतीय उद्योग जगत द्वारा मिलकर विकसित की गई स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, आज हमारे समुद्र और हमारे आसमान में एक बात समान है. वो है कि वो दोनों ही एक ऐसे देश की कहानी कहते हैं जो ज्यादा मजबूत, ज्यादा आत्मविश्वास

0: भरा और ज्यादा आत्मनिर्भर हो रहा है।
1: Yes, and if I ask you, Charu, to think of what is one gift that India has shared with almost every country in the world without charging a single rupee? No, it's not software, it's not spices, it's not Bollywood, it's actually yoga.
0: बिल्कुल.
1: And this year's International Yoga Day became a global celebration, wasn't it?
0: बिल्कुल. देखो, दुनिया भर में 2500 से ज्यादा जगहों पर योग कार्यक्रम हुए और देश में भी करोड़ों लोगों ने स्कूल, पार्कों, स्टेडियमों में और सार्वजनिक जगहों पर अपनी मैट बिछाई। सूरज उगने के समय अपने आसपास के पार्क के बारे में सोचिए, बच्चे स्ट्रेचिंग कर रहे थे, माता पिता बैलेंस बनाने वाले पोज करते हुए हंस रहे हैं और दादा दादी शांति से ध्यान में बैठे हैं। यही योग की खूबसूरती है और यही सभी के लिए है। इस बहाने लोग आपस में मिलते हैं और हेल्थ का भी ख्याल होता है।
1: एब्सोल्युटली चारू, एंड मोरओवर इंडिया आल्सो डोमिनेटेड द वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप इन अहमदाबाद, विनिंग एन इनक्रेडिबल 114 मेडल्स, इंक्लूडिंग 102 गोल्ड मेडल्स एंड अ proud moment indeed. Now let me ask you something, Charu. Can patriotism look like skipping an unnecessary foreign trip, sharing your right to work, or using the metro, or choosing local products? At first glance, these seem like small personal decisions, but together they can become national strength.
0: बिल्कुल. देखो, पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री ने नागरिकों से अपील की कि वो बिना जरूरत सोडा ना खरीदें। ये बात तो वाकई बहुत ध्यान देने के देखे, जहां तक हो सके विदेश यात्रा टाल दें, कार पुलिंग अपनाएं और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें। और एक बहुत अच्छी बात हुई, लोगों से बात, मतलब लोगों ने मन की बात मानी, जो उन्होंने कहा उसे करने की पूरी कोशिश की। परिवारों ने नया सोना खरीदने के बजाय पुरानी ज्वेलरी को रिसाइकल करने का फैसला किया। एक ही ऑफिस जाने वाले दोस्तों ने अलग अलग ना जाने के बजाय साथ यात्रा शुरू की। कई लोगों ने बस और मेट्रो सेवाओं का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो पहले नहीं करते थे।
1: एब्सोल्युटली चारू, एंड हियर्स अनदर इंस्पायरिंग स्टोरी। इन महाराष्ट्रस नांदेड डिस्ट्रिक्ट, द पेटकर फैमिली क्वाइटली अरेंज्ड एक्सीडेंट इंश्योरेंस फॉर अराउंड 3500 विलेजर्स। नो हेडलाइंस, no publicity, just compassion. And the government too continues extending this safety net. And under the Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, accidental insurance worth 2 lakh rupees is available for just 20 rupees a year, and that's less than the price of a packet of chips.
0: पता है, देखो, 58 करोड़ से ज्यादा भारतीय पहले ही इसमें शामिल हो चुके हैं और इसी तरह प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत सिर्फ 436 रुपए के सालाना प्रीमियम, यानी रोजाना लगभग अभिषेक 1.5 रुपए पर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा मिलता है। अब आइए एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि कई समस्याएं ऐसी हैं जिससे समाज जूझता है। जैसे कि हम कभी अंधविश्वास कर लेते हैं, जैसे भाई क्या आपने कभी किसी को ये कहते सुना है, भाई आज ऐसा मत करो, वो पक्षी अशुभ है या उस पेड़ पर भूत का साया है। तो ये सब बातें बहुत होती है क्योंकि इंसान की सोच में शामिल हो
1: जाती है। I'll tell you why, Charu, because we all know that fear spreads quickly, but facts don't. Now, however, here's an inspiring story from Assam. The rare Hargila bird was once considered inauspicious. People even cut down trees where it nested. Then came biologist Purnima Devi Barman, and instead of arguing, she educated. She explained science, she involved local women, and slowly misconceptions disappeared. Thousands of women joined hands to protect the bird and proudly calling themselves the Hargila Army.
0: और देखिए, आज इन लेडीज की वजह से इस पशु की कीमत बढ़ी है, मतलब लोगों ने मानना शुरू किया है। अब चलिए बात करते हैं खेलों की। जरा सोचिए, एक फुटबॉल का मैदान है जहां 5 साल के छोटे छोटे बच्चे पूरे जोश के साथ गेंद के पीछे भाग रहे हैं। कुछ गिरते हैं, कुछ हंसते हैं और कुछ गोल करते हैं, लेकिन हर बच्चे का कोई ना कोई सपना होता है। नागालैंड में नागालैंड बेबी लीग के जरिए ठीक यही हो रहा है, जहां 5 साल तक की उम्र के बच्चों को फुटबॉल से परिचित कराया जा रहा है। एक चैंपियन को दूसरों से क्या अलग बनाता है, ये नहीं कि उन्होंने शुरुआत कहां से की, बल्कि अभिषेक ये कि उन्होंने शुरुआत करने का फैसला किया।
1: एब्सोल्युटली चारू, एंड नॉट ओनली दैट, इंडियाज कल्चर इज आल्सो ट्रैवलिंग फार बियॉन्ड इट्स बॉर्डर्स। द डोमिनिकन रिपब्लिक हैज ओनली अ स्मॉल इंडियन कम्युनिटी, येट अ ग्रुप ऑफ स्पैनिश स्पीकिंग लोकल्स हैज फॉर्म्ड अ टीम कॉल्ड द ब्रह्म कमाल डोमिनिकाना, एंड दे आर लर्निंग वैदिक लिटरेचर, reciting ancient mantras and embracing India's traditions with incredible dedication. Now, isn't it amazing, Charu? And sometimes people thousands of kilometers away value our heritage so deeply that it reminds us to value it even more.

0: अभिषेक, कभी आपने ऐसा पुल देखा है जो स्टील या सीमेंट का ना हो बल्कि जीवित पेड़ों की जड़ों से बना हो? बताओ। बताती हूँ, मेघालय। मेघालय में ये बिल्कुल समझिए कि मेघालय में आपका स्वागत है और यहाँ प्रकृति और इंसानी सब्र मिलकर कुछ जादू बनाते हैं।
1: एक्चुअली चारू, मेघालय इज नोन एज द एबोड ऑफ द क्लाउड्स।
0: ओके, बट यहाँ जो मशहूर लिविंग रूट ब्रिजेस, जीवित जड़ों वाले पुल को बनने में कई दशक लग जाते हैं, और हैरानी की बात यह कि आम पुलों के उलट ये समय के साथ और मजबूत हो जाते हैं। भारत ने अब इन अद्भुत पुलों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने का प्रस्ताव रखा।
1: एंड फॉर आवर लिसनर्स, हियर्स वन फाइनल स्टोरी। कैन अ डिस्कार्डेड प्लास्टिक बॉटल बिकम समथिंग वैल्यूएबल अगेन? मोस्ट ऑफ अस वुड प्रोबेबली से नो, but the women of Biora, Madhya Pradesh, proved otherwise. They collected plastic waste and converted it into eco bricks, giving a new look to public spaces and a new purpose to what was once considered useless.
0: बिल्कुल, गणेश उत्सव से पहले श्री मोदी ने लोगों से अपील की कि वे प्लास्टर ऑफ पेरिस की जगह मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें, ताकि त्योहार पर्यावरण के अनुकूल बने और स्थानीय कारीगरी को बढ़ावा मिले। अपने संबोधन के आखिर में प्रधानमंत्री ने सभी से आग्रह किया कि बारिश की एक भी बूंद बर्बाद ना होने दें। उन्होंने नागरिकों से कैच द रेन अभियान को मजबूत करने और जल संरक्षण को सामूहिक जिम्मेदारी बनाने का आह्वान किया।
1: सो टू रैप अप अ डिस्कशन ऑन द पीएम्स मन की बात टुडे, चारू, इफ देयर इज वन मैसेज दिस स्टोरीज लीव अस विद, इज दिस: द फ्यूचर ऑफ इंडिया इज नॉट शेप्ड बाय अ हैंडफुल ऑफ पीपल, इट इज शेप्ड बाय मिलियंस ऑफ एवरीडे इंडियंस मेकिंग थॉटफुल चॉइसेस, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, प्रिजर्विंग ट्रेडिशंस एंड ड्रीमिंग बिगर than ever before, and that is the greatest strength, that is the greatest pride, and that is how India doesn't just rise, it rises together.
0: और अभिषेक, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। देखिए, झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक हुनर के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। राज्य के 11 और महत्वपूर्ण उत्पादों को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग मिल गया है। एक रिपोर्ट।
2: रेडियो फरमाइशों के लिए दुनिया भर में मशहूर कोडरमा का झुमरी तलैया अब अपनी एक खास मिठाई के लिए विश्व मानचित्र पर चमकेगा। ये मिठाई है केसरिया कलाकंद, जो GI टैग पाने वाला झारखंड का एकमात्र खाद्य पदार्थ बन गया है। 60 के दशक में विभाजन की त्रासदी झेलकर पाकिस्तान से आए हंसराज और मुल्कराज भाटिया परिवार ने इस हुनर की नींव रखी थी।
3: सबसे फर्स्ट कलाकंद हम लोगों ने यहाँ पर बनाया और जो कि इतना फेमस हुआ कि फॉरेन तक गया, और उसके बाद में हम लोग 30-40 साल तक दुकान चली है। GI टैग हमको मिल रही, बहुत ही खुशी हुई है और हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। उस समय का दूध बहुत ही, आज से गाढ़ा बोलिए अच्छा बोलिए, उस समय 4-5 किलो में 1 किलो कलाकंद तैयार हो जाता था। इसमें चीनी, केसर, पहले सादा कलाकंद बनता था, उसके बाद केसरिया जब शुरू हुआ, केसर पड़ने लगा, पिस्ता पड़ता था और गुलाब जल पड़ता है। ये बनाने का प्रोसेस है और इसको कम से कम 1-1.5 घंटा लगता है तैयार होने में।
2: झारखंड की कला सिर्फ स्वाद तक सीमित नहीं है। हजारीबाग की लगभग 4000 वर्ष प्राचीन धातु ढलाई कला डोकरा आर्ट को भी GI टैग क्लब में शामिल किया गया है। मिट्टी, मोम और पीतल को पिघलाकर अद्भुत मूर्तियां बनाने वाले झारक्राफ्ट सेंटर के हस्तशिल्पी इस फैसले से बेहद उत्साहित हैं।
4: GI टैग मिल गया तो देश विदेशों तक हमारे इस क्राफ्ट की पहचान जाएगी, झारखंड का नाम रोशन होगा और भी आगे बढ़ेगा। मल्हार जाति से आर्टिजन्स जो ये काम करते हैं वो बिलोंग करते हैं, तो हमारे यहाँ पर झारक्राफ्ट में ट्रेनिंग भी दी जाती है। इस आर्टिजन को लग रहा है GI टैग मिल गया है तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा हमारा, तो इससे लगता है कि डोकरा क्राफ्ट और ऊपर जाएगा। मैं प्रधानमंत्री को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने थोड़ा देखा इन कारीगरों को।
2: इस बार GI सूची में कुचाई सिल्क, बांस शिल्प, जादू पटुआ पेंटिंग और आदिवासी आभूषणों को भी जगह मिली है। वर्ष 2019 तक राज्य के पास सिर्फ सोहराय खोवर पेंटिंग को GI टैग प्राप्त था, जो अब उद्योग विभाग के विजन से 12 हो चुका है। इससे स्थानीय कारीगरों को कानूनी सुरक्षा और आर्थिक मजबूती मिलेगी। परिक्रमा के लिए कोडरमा से गजेंद्र बिहारी और हजारीबाग से गौरव प्रकाश के साथ रांची से मैं महविश रहमान।
1: The Andhra Pradesh government has drawn up an ambitious plan to transform Visakhapatnam into a model green city through a series of sustainable development initiatives. The focus will be on increasing green cover, reducing pollution, promoting clean energy and encouraging eco-friendly transport.

0: Out across the city, we have more from a correspondent.
1: As part of its vision to develop Visakhapatnam as a model green city, the Andhra Pradesh government will transform Andhra University into a model net zero campus and a global hub for environmental studies and sustainability. The plan envisages increasing the green cover on the university's 450-acre campus from the present 25% to 50% through large-scale plantation drives. Solar panels will be installed on campus buildings, while a biodiversity park will also be developed. The projects include scientific solid waste management, waste-to-energy and biogas plants, and systems for recycling and reusing wastewater. Electric bicycles will also be introduced to promote clean mobility within the campus, and a dedicated team of professors will oversee the university's transition to a net-zero campus. The government has also planned focused measures to reduce pollution in areas surrounding the Visakhapatnam port and major industrial zones. Dedicated cycle track will be developed across the city to encourage eco-friendly transport and healthier lifestyles. Chief Minister N. Chandrababu Naidu said the government aims to increase Andhra Pradesh green cover to 50% and develop Visakhapatnam as a model city for sustainable urban growth through renewable energy, environmental conservation and modern green infrastructure. Allu Murali for Parikrama, Akashwani News, Visakhapatnam.
2: जी हाँ, बता दें महाराष्ट्र के पुणे ज़िले के ऐतिहासिक तीर्थ स्थलों आलंदी और देहू से हर साल निकलने वाली पंढरपुर की वारी कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है और ये दोनों पालकियाँ 21 दिन की यात्रा के बाद आषाढ़ी एकादशी से एक दिन पहले पंढरपुर पहुँचती हैं और पंढरपुर की वारी की 700 साल से भी ज़्यादा पुरानी परम्परा है। पूरे राज्य से लाखों वारकरी पंढरपुर में कृष्ण के रूप में विराजमान भगवान विट्ठल से मिलने के लिए विठू नाम का जाप करते हुए सैकड़ों मील का सफर करते हैं। भजन, कीर्तन और रिंगण इस यात्रा के मुख्य आकर्षण हैं। इस ऐतिहासिक परंपरा का दर्शन हमारे पुणे संवाददाता से।
3: संत ज्ञानेश्वर महाराज और संत तुकाराम महाराज की पालकी यात्रा का इतिहास सिर्फ धार्मिक परंपरा का इतिहास नहीं है, बल्कि ये महाराष्ट्र के सांस्कृतिक, सामाजिक और लोक जीवन का चलित दस्तावेज है। संतों के समय में पालकी समारोह की कोई औपचारिक संकल्पना नहीं थी। वारकरी ताल मृदंग, वीणा, भगवा झंडा और संतों की पादुकाएं या यादगार चीजें लेकर पंढरपुर की ओर पैदल निकल पड़ते थे। गांव में रुकना, रात में भजन कीर्तन, सुबह हरिनाम की धुन और फिर यात्रा। यात्रा इतनी सादगी से होती थी। कोई रथ नहीं, कोई नायक नहीं, कोई तय मुकाम नहीं, कोई प्रशासनिक इंतजाम नहीं। विट्ठल का नाम ही एकमात्र सहारा था। संत तुकाराम महाराज के वैकुंठ के जाने के बाद उनके छोटे बेटे चिरंजीव नारायण महाराज ने वारी का नेतृत्व संभाला। उन्होंने वारकरियों को संगठित किया और वारी को अधिक नियमित और अनुशासित रूप दिया। वारकरी परंपरा के कुछ जिक्रों के अनुसार शुरू में कुछ समय के लिए वारी दोनों संत परंपराओं के बीच एकता की भावना के साथ की जाती थी। इसलिए ज्ञानोबा तुकोबा का संयुक्त आह्वान वारकरी संप्रदाय की आध्यात्मिक एकता का प्रतीक बन गया। वारी सिर्फ पंढरपुर की धार्मिक यात्रा नहीं है, ये महाराष्ट्र के लोगों की एक जैविक परंपरा है। परिक्रमा के लिए मनोज क्षीरसागर, पुणे।
2: और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। भारत ग्रुप में दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना होगा। उधर बेलफास्ट में दूसरे टी20 पुरुष क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। दो मैचों की श्रृंखला में आयरलैंड ने पहले मैच में भारत को 34 रन से हराया था।
0: Yes, and in the FIFA World Cup, Argentina star Lionel Messi has become the first player in history to score in 7 consecutive World Cup games. The 39-year-old scored with a free kick after coming off the bench as Argentina won 3-1 against Jordan. It was Messi's 6th goal of the 2026 World Cup as he leads the Golden Boot race by 2 goals. Giovanni Lo Celso and Lautaro Martinez scored the other 2 goals for Argentina as they finished the Group J campaign with 3 wins from 3.
2: हाँ जी अभिषेक, देखिए अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और फिर बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
4: We remember freedom fighter and former Prime Minister of India, Pamulapurthy Venkata Narasimha Rao, who was born on the 28th of June 1921 at Karimnagar, Hyderabad. He is often referred to as the father of Indian economic reform.

0: P.V. Narasimha Rao, popularly known as P.V., studied in Osmania University, Hyderabad, Bombay University and the Nagpur University. He was part of the Vande Mataram movement in the late 1930s in the Hyderabad state. Along with his distant cousins, Pamulapurthy Sadasiv Rao, Raja Narendra and Devulapalli Damodar Rao, P.V. Narasimha Rao edited a Telugu weekly magazine called Kakatiya Patrika in the 1940s. Both P.V. Narasimha Rao and Sadasiva Rao contributed articles under the pen name Jaya Vijaya.
1: After independence, Rao joined politics and held many important portfolios. P.V. Narasimha Rao became the Chief Minister of Andhra Pradesh in 1971 and implemented land reforms and land sealing acts strictly.
0: He also secured reservation for the so-called lower castes in politics during his tenure. He was elected to the Lok Sabha in 1977 and handled several diverse portfolios, most significantly home, defence and foreign affairs.
1: P.V. Narasimha Rao became Prime Minister of India in 1991 and successfully led the liberalisation of the Indian economy. The reforms opened up the Indian economy to foreign investment, reformed capital markets, deregulated domestic business and reformed the trade regime.
0: The impact of these reforms may be gauged from the fact that total foreign investment in India grew from $132 million in 1991-92 to $5.3 billion in 1995-96. The measures continue to impact the influx of foreign portfolio investment in India and have helped India become a strong global economy.
1: P.V. Narasimha Rao had special interest in Indian philosophy and culture, writing fiction and political commentary, learning languages, writing poems in Telugu and Hindi. He spoke 17 languages.
0: Rao suffered a heart attack on the 9th of December 2004 and died 14 days later at the age of 83.
2: Aur Abhishek, aaj jayanti hai nishanebaz Jaspal Rana ka. जी उनकी अभी कुछ दिन पहले 12 जून को उनका निधन हुआ. निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा सिर्फ 49 वर्ष के थे. राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे. जसपाल राणा ने मनु भाकर को निशानेबाजी में प्रशिक्षित किया और वर्ष 2024 के पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतने में मदद की. उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. उनका जन्म 28 जून 1976 को भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी में हुआ था. जसपाल राणा के साथ ही तमिलनाडु के सलेम जिले के रहने वाले पैरा ओलंपिक हाई जंपर मरियप्पन थंगावेलु का भी जन्मदिन इसी दिन होता है. उन्होंने रियो डी जेनेरियो में हुए 2016 समर पैरा ओलंपिक खेलों में पुरुषों की हाई जंप T42 कैटेगरी में भारत का प्रतिनिधित्व किया और फाइनल में गोल्ड मेडल जीता. खेल में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने मरियप्पन को पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार जैसे कई सम्मान दिए. इसके बाद 2020 में उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला.
3: यस एंड वी आल्सो रिमेंबरिंग प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस हु पास्ड ऑन दिस डे इन 1972. ही वाज अ वर्ल्ड रिनाउंड इंडियन साइंटिस्ट फिजिसिस्ट एंड अप्लाइड स्टैटिस्टिशियन वाइडली रिवर्ड As the father of Indian statistics, he transformed statistics from an abstract academic subject into a powerful practical tool for governance, macroeconomic planning, and nation building in newly independent India. Mm-hmm. His birth anniversary on June 29th is celebrated annually as National Statistics Day in India.
2: और पता है उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा वेल्डन मेडल पुरस्कार भी दिया गया था, जबकि 1945 में रॉयल सोसाइटी ने उन्हें अपना फेलो नियुक्त किया था. वे आज़ादी के पश्चात नवगठित मंत्रिमंडल के सांख्यिकी सलाहकार बने. वो आपने अभी बताया ही है. औद्योगिक उत्पादन की तीव्र बढ़ोतरी के जरिए बेरोजगारी समाप्त करने के सरकार के प्रमुख उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उन्होंने योजनाएं बनाई. प्रधानमंत्री नेहरू ने कृषि और बाढ़ नियंत्रण में उनकी मदद से कई प्रयोग किए. सरकार को बाढ़ नियंत्रण में अप्रत्याशित सफलता मिली और उनका सबसे बड़ा योगदान उनका सैंपल सर्वे है, जिसके आधार पर आज बड़ी बड़ी नीतियां और योजनाएं बनाई जा रही हैं.
3: यस एंड ए के लोहिता दास पॉपुलरली नोन एज लोही वाज अ हाईली सेलिब्रेटेड इंडियन स्क्रीन राइटर डायरेक्टर एंड प्लेराइट हु लेफ्ट अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन मलयालम सिनेमा. बॉर्न ऑन मे 5th 1955 एंड हैविंग पास्ड अवे ऑन जून 28 2009

0: He spent over two decades crafting some of the most emotional, realistic and character-driven stories in Indian film history.
1: आज हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार तथा उपन्यासकार अमर गोस्वामी की पुण्यतिथि है। वे मनोरमा और गंगा जैसी देश की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं से लंबे समय तक जुड़े रहे थे। अमर गोस्वामी साहित्यिक संस्था वैचारिकी के संस्थापक भी रहे। उन्होंने कई साहित्यिक पत्रिकाओं का संपादन किया। अमर गोस्वामी ने एक प्राध्यापक के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। महिलाओं की बहुचर्चित पत्रिका मनोरमा में उन्होंने बतौर उप संपादक अपनी सेवाएँ प्रदान की। उनकी मुख्य रचनाएं हैं इस दौर में हम सफर, महुए का पेड़, धरती पुत्र, बाहुबली, अपनी अपनी दुनिया, कल का भरोसा, भूल भुलैया आदि।
0: यस एंड आल्सो चारू विशाल डाडलानी वाज बोर्न ऑन दिस डे। इज अ प्रोमिनेंट इंडियन प्लेबैक सिंगर, म्यूजिक कंपोजर, लिरिसिस्ट एंड टेलीविजन पर्सनालिटी। इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज वन हाफ ऑफ द प्रीमियर बॉलीवुड म्यूजिक प्रोडक्शन डुओ विशाल एंड शेखर एंड द फ्रंटमैन ऑफ द पायनियरिंग Indian indie rock band Pentagram. Let's go ahead and listen to one of his hit tracks.

0: आज कर्नाटक के धारवाड़ जिले के कन्नड़ कवि डॉक्टर चिन्नावीरा कनावी की जयंती है। उन्हें भावनाओं के कवि के तौर पर जाना जाता था, जो अलग अलग भावों में तालमेल बैठाने में माहिर थे। देखो अभिषेक, डॉक्टर कनावी की कविताओं का पहला संग्रह काव्याक्षी 1949 में प्रकाशित हुआ था। उन्हें 1981 में उनकी रचना जीवा ध्वनि के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसके अलावा उन्हें कर्नाटक सरकार से राज्योत्सव पुरस्कार, पंपा पुरस्कार, नाडोजा की उपाधि और कई अन्य पुरस्कार भी मिले।
1: Yes, and also Jean Jacques Rousseau was a highly influential Genevan philosopher, writer and political theorist whose ideas profoundly shaped the age of enlightenment across Europe. His radical thoughts on human nature, governance and individual freedom laid the intellectual foundation for the French Revolution and heavily inspired the subsequent Romantic movement. And Rousseau famously agreed that humans are inherently good, free and empathetic by nature, but are corrupted by the development of civil society, civilization and private property.
0: वैसे बता दें कि बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर राजीव वर्मा का भी आज जन्मदिन है और वो अपना जन्मदिन मना रहे हैं। आज के दिन भोपाल में साल 1949 में इनका जन्म हुआ था। वो दो दशकों से अधिक समय से काम कर रहे हैं, लेकिन अब समय हमें ऐसा लगता है कि कह रहा है कि भाई बस। तो आज का परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। तो इजाज़त दीजिए मुझे यानी चारू सक्सेना और मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय को।
1: नमस्कार।
2: ஆகாஷ்வாணி, நேரம் 5 மணி. சென்னை வானொலி 100.1 MHz FM கோல்ட் வழங்கும் அரங்கிசை நிகழ்ச்சியில் ஆர் பி ஸ்ரவன் அவர்களின் பாட்டு கேட்கலாம். வி வி ஸ்ரீனிவாஸ் ராவ் அவர்கள் வயலின், காலகாட் கே ஆர் ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள் மிருதங்கம். நிகழ்ச்சியில் முதலில் ஏரா நாப்பை பட்னம் சுப்பிரமணியம் ஐட்டிய வர்ணம், தோடி ராகம் ஆதி தாளம்.

0: தொடர்வது இந்தியில் செய்தி அறிக்கை டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர் ஃபிரோசி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जलवायु कार्रवाई उचित, उत्तरदायित्वपूर्ण और समान होनी चाहिए। सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करते हुए आज प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जलवायु न्याय का मूल तत्व है। उन्होंने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां विकास समग्रता में हो और जहां अंतर्राष्ट्रीय संस्थान समसामयिक वास्तविकताओं को परिलक्षित करें। श्री मोदी ने कहा कि भारत के विजन महासागर में सेशल्स का विशेष स्थान और ये प्रतिबद्धता पहले से कहीं अधिक ज्यादा मजबूत हुई है।
2: I came here because I believe that Seychelles occupied a special place in India's vision for the Indian Ocean. Today, as I return here after a decade, that conviction is stronger than ever. And I'm delighted to join you as you celebrate 50 years of your independence. Congratulations to you and the people of Seychelles on this special occasion.
1: श्री मोदी ने कहा कि मानचित्र में सेशल्स हिंद महासागर में द्वीपों के समूह के रूप में दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि भारत इसे ऐसे राष्ट्र के रूप में देखता है जो अपनी सीमाओं से परे है। श्री मोदी ने कहा कि ये विशेष सम्मान है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित कर रहा है।
2: President Armini and the people of Seychelles for honoring me with the guardian of the Blue Horizon earlier today. It will encourage all those who are making sustained efforts for environment conservation. I bring with me the warm greetings and best wishes of 1.4 billion people of India.
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को

0: सेशल्स की राजकीय यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध सभी देशों को समर्पित किया। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत में गांव की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में उन्होंने कहा कि विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। श्री चौहान ने आश्वस्त किया कि ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण के लिए पंचायतों को ठोस वित्तीय सहायता मिलती रहेगी। अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। ये कार्रवाई शुक्रवार को हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एक तेल टैंकर पर हुई ड्रोन हमले के जवाब में की गई। भारत ने एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप का कांस्य पदक जीत लिया है। अहमदाबाद में कांस्य पदक के लिए खेले गए मुकाबले में भारत ने बहरीन को 3-1 से हराया। ये भारत का इस प्रतियोगिता के इतिहास में पहला पदक है। भारत ने आयरलैंड के साथ 2 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला के दूसरे और अंतिम मैच में बेलफास्ट में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। और महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत आज अपने ग्रुप मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम 4 मैच में 3 जीत के साथ ग्रुप में दूसरे स्थान पर है। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया पर जीत हासिल करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ஆகாஷ்வாணி நேரம் 6:05.
2: நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஆகாஷவாணியின் சென்னை எஃப்எம் கோல்டு 100.1.
1: இனி நிகழ்ச்சி நிரல். இன்றும் நாளையும் இடம்பெறும் நிகழ்ச்சி பற்றி அறிவிப்பு. இன்றைய இரவு 8 மணிக்கு மனதின் குரல். பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இன்று காலை வானொலி வழி தன் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்ட மன் கி பாத் உரையின் தமிழாக்கம் தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி வானொலி நிலையங்களின் அனைத்து அலைவரிசைகள் டிடிஎச் மற்றும் டிஆர்எம் ஆகியவற்றில் ஒலிபரப்பாகும். இன்று மாலை 6:30 மார்க்கெட் மந்த்ரா, 6:10 விஷுவலேஷன், 7:10 கனிந்த வாழ்வு முதுமை இனிதாக, முதியோர் நல ஆர்வலர் எம் அண்ணாதுரை அவர்களுடன் நேர்முகம், யோகா பயிற்சியாளர் எல் செல்வரதி அவர்கள் வழங்கும் ஆலோசனைகள், 7:50 செய்தி கதம்பம், 8:00 மனதின் குரல், 8:35 திரைகானம், 9:15 ஸ்பாட்லைட், 9:30 தேசிய அறிவியல் ஏடு, 10:10 விஸ்வதர்பன், 10:20 வேர்ல்ட் நியூஸ், 10:30 வெஸ்டர்ன் மியூசிக், 11:10 திரைகானம். எஃப்எம் கோல்டு 100.1 மெகஹர்ட்ஸ் நள்ளிரவுக்கு பின் 12:10 ஸ்வர் தரோகர், 12:25 இரவின் மடியில், 1:10 நினைவில் நின்றவை, 2:10 நெஞ்சம் மறப்பதில்லை, 3:10 இனியராகும் பண்டிட் கார்த்திக் குமார் அவர்களின் சர் பஹார் இசை, அதிகாலை 4:10 பொங்கு மங்கலம், போந்தவாக்கம் பி டி பலராமன் அவர்களின் நாகேஸ்வர இசை, வடபழனி என் விஜயகுமார் அவர்கள் தவில், 5:10 புலரும் பொழுது, 6:10 தேனிசை, 7:25 திரை இசை, 7:30 ஹாத் சவேரி, 8:30 திரைகானம், 9:00 அரங்கிசை, சேலம் ஆர் ஸ்ரீராம் அவர்களின் பாட்டு, பி விட்டல் ரங்கன் அவர்கள் வயலின், கள்ளிடைக்குறிச்சி எஸ் சிவகுமார் அவர்கள் மிருதங்கம், 10:10 விஸ்வதர்பன், 10:20 வேர்ல்ட் நியூஸ், 10:30 சுகமான ராகங்கள், 11:10 திரைகானம், 11:10 மல்லை பூதண்டா தெலுங்கு நிகழ்ச்சி, நண்பகல் 12:00 நிகழ்ச்சி நிரல் தொடர்ந்து

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और आपने ट्यून किया है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो साथी अंशु अग्रवाल। जी हां, शाम का वक्त है और वक्त हो चला है 6:11:14। देखिए, शाम का वक्त है और ये जो समय होता है, ये आज क्योंकि रविवार है तो अपने परिवार के साथ बैठकर बहुत सारी मस्ती आप कर रहे होंगे। ज़रूर चाय का वक्त तो हो ही चुका है, तो बिना किसी बहुत सारी बातों के आइए पहले शाम की शुरुआत करते हैं चाय की चुस्की भरिए और किशोरदा की आवाज़ में ये खूबसूरत गीत आपके लिए।

जी हाँ, आने वाला पल तो जाने वाला है, लेकिन इसके लिए आपके जीवन में जो पल अभी वर्तमान में चल रहा है उसे मत भूलिए, क्योंकि पल और ये जिंदगी और ये जो सफर है जिस पर हम सभी चल रहे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है।

0: यत्र स्वदेश निर्मितस्य मेक इन इंडिया C-295 सैन्य परिवहन विमानस्य प्रथमं परीक्षण उड्डयनं सफलतापूर्वकं सुसंपन्नम्। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे जनान् संबोधयन् प्रधानमन्त्रिणा इयं सूचना प्रख्यापिता यत् सम्प्रति एतादृशानि चत्वारिंशत् विमानानि भारतदेशे एव विनिर्मीयन्ते।
1: जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: श्री मोदिना गदितं यत् देशे अन्ये केचन महत्वपूर्णाः प्रयासाः विधीयन्ते। अस्मिन्नेव क्रमे देहल्यां स्थितः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा डेटा साइंस इत्यादिषु आधुनिक विषयेषु बीटेक पाठ्यक्रमस्य शुभारंभं विदधाति।
1: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी सहर्षं न्यगादीत् यत् अद्य भारतीय संस्कृतिः विश्वस्मिन् हि विश्वे प्रसरति। श्री मोदी गौरवान्वितः अस्ति यत् भारतेन अस्मिन् मासे देशस्य सुरक्षायाः आत्मनिर्भरतायाः च क्षेत्रे महती सफलता समर्जिता। सः कोलकाता नगरे आयोजितम् एकं नौसेना सम्बन्धि कार्यक्रमं सम्बोधितवान् यत्र INS दुनागिरि, INS संशोधक, INS अग्रयश्च भारतीय नौसेनायाः क्षेत्रे समाविष्टाः। प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् भारतं समुद्रतः आकाशपर्यन्तम् उत्तरोत्तरं सुरक्षितम् आत्मनिर्भरं च भवति।
1: कोलकाता में INS दुनागिरि, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
0: मोदिना अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य अपि उल्लेखो विहितः। तेन अहमदाबाद नगरे आयोजितायाः विश्व योगासन प्रतियोगितायाः विषये कथितं यत् अस्यां भारतेन 2,100 स्वर्ण पदकैः सह आहत्य 14,100 पदकानि विजितानि। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रतिपादितं यत् राष्ट्रनिर्माणे जनसहभागितायाः शक्तिः भारतस्य कृते एका महती सम्पत्तिः वर्तते।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: अनेन सहैव श्री मोदिना प्रोदीरितं यत् आगामी गणेशोत्सवाय गणपति बप्पा भगवतः प्रतिमा अनिवार्य रूपेण अस्यैव देशस्य मृत्तिकायाः भवेत्। सा च स्थानीय कुम्भकारैः शिल्पीभिः विनिर्मिता स्यात्। तेन मूर्ति निर्मातारः अपि अनुरुद्धाः यत् ते मृण्मय मूर्तीणां निर्माणाय एव प्राथमिकतां दद्युः। स्वीय सम्बोधनस्य चरमे सोपाने प्रधानमन्त्रिणा जलसंरक्षणस्य विषये च बलं प्रदत्तम्। तेन कथितं यत् वर्षाजलस्य एकैकोऽपि बिन्दुः संरक्षणीयः वर्तते। श्रीमोदिना विशेषरूपेण गदितं यत् जलसंरक्षणार्थं कैच द रेन अभियानस्य वेगः मन्दो न भवेत्। संस्कृतवार्तायाः

0: Good evening and welcome to the Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, being Sunday, we will also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on mutual fund and related matters. To connect with us with your mutual fund related queries, you can call us on 2331-4444, 2371-0481 and 2371-7106. And of course, do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Prachi Priya.
1: नमस्कार. कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है. आज रविवार है श्रोताओं, और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे. सवाल पूछने के लिए आप इन नंबर्स पर हमें कॉल कर सकते हैं. ये नंबर्स हैं 2331-4444, 2371-0481 और 2371-7106. श्रोता, इससे पहले एसटीडी कोड भी डायल करें. आज की खबरों पर चर्चा करने के लिए और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट स्नेहा सूरी. स्नेहा, मार्केट मंत्र में आपका हार्दिक अभिनंदन.
2: जी, धन्यवाद.
1: श्रोताओं, तब तक आप हमें कॉल मिलाइए जब तक हम आपको सुनाते हैं हेडलाइंस.
0: थैंक यू प्राची. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज इंडिया इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली सिक्योर एंड

0: self-reliant from seas to skies. Indian Seychelles signed agreements in various fields, including agriculture and finance. And in bullion market, gold and silver prices extend losses last week.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत समुद्र से लेकर आकाश तक तेजी से सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। भारत और सेशेल्स ने कृषि और वित्त समेत कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया और पिछले सप्ताह सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। मार्केट।

0: समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया और पिछले सप्ताह सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई।
1: And before we begin the program, here is an important piece of announcement for our listeners. The views and opinions expressed by our experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
0: आज आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में देश को संबोधित करते हुए बताया कि जून में भारत ने विमानन क्षेत्र में बड़ी कामयाबी हासिल की जब मेड इन इंडिया C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की।
2: ये विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में जनभागीदारी की ताकत भारत के लिए एक बहुत बड़ी संपत्ति है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव को देखते हुए जब उन्होंने देशवासियों से कुछ बातों पर ध्यान देने का आग्रह किया तो एक बार फिर ये जनभागीदारी देखने को मिली।
2: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचे, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचे, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हमारे पहले कॉलर हमसे जुड़ने के लिए तैयार हैं। इनका नाम है जगदीश और ये है नोएडा से। जगदीश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए। जगदीश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं?
1: Till the time, there seems to be some kind of a technical issue here, and we will get back to Jagdish as and when that issue is resolved. In the meanwhile, Sneha, let's begin with, you know, we heard the Prime Minister, Mr. Modi, today talking about how India has achieved major success in the aviation sector in June. So when, you know, and this is defense, he also spoke about the defense sector. So from an investor's point of view, what would you say about, you know, the defense sector, how important or how can, you know, how rosy is the picture right now for the defense sector?
3: Right. Before we talk about from an investor standpoint, I would say from an Indian standpoint, such, you know, evolutions are always welcome and should be looked at that way. Now, coming to your personal finance aspect, as you know, it is often seen that every new development adds up to every kind of portfolio or stock related to that particular company, yes, sector, segment. And that is where the role of having a diversified portfolio kicks right in. So stay invested in, you know, categories like multi-cap, flexi-cap to get hands on every kind of development that is that our nation is making way for you, because having ownership to such companies actually gives you that kind of feeling that, you know, you are also getting a part of a share in that particular development.
1: And you're part of the progress that the country is making.
3: Absolutely.
0: Aur is beech Delhi se hamare saath Yogesh jud rahe hain. Yogesh ji, karyakram mein aapka abhinandan. कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: जी जी, आप सभी को नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि जैसे अक्सर लोग ज्वाइंट अकाउंट खोलते हैं जिसमें हस्बैंड वाइफ दो लोग मिलकर ज्वाइंट अकाउंट खोलते हैं, क्या म्यूचुअल फंड के अंदर भी ऐसे ज्वाइंट अकाउंट खोला जा सकता है जिसमें दो पैन कार्ड से दो इन्वेस्टर एक ही फंड के अंदर इन्वेस्ट करें, और उस पर अगर वो खुला रखे तो उस पर टैक्सेशन किस तरह का लागू होता है? दूसरा मेरा सवाल ये है कि SBI स्मॉल कैप फंड, इससे बड़े परेशान हो गए, इसका क्या करा जाए? इसको भी रखिए कि इसको स्विच कर दें या इसको होल्ड करें?
3: जी योगेश जी, जहाँ तक आपका पहला सवाल की बात है कि जॉइंट अकाउंट हम खोल सकते हैं नहीं म्यूचुअल फंड्स में, तो हम बिल्कुल खोल सकते हैं। आप जब AMC के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो एक्चुअली आपको ऑप्शन देता है कि आप सिंगल होल्डिंग चाहते हैं, मतलब जिसमें एक ही पर्सन का नाम रहता है, या फिर

0: आप जॉइंट होल्डिंग चाहते हैं जिसमें आप प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ऐड कर सकते हैं, और जो आपका दूसरा सवाल है SBI स्मॉल कैप के बारे में, तो इस फंड का कुछ 2-3 साल से प्रदर्शन थोड़ा ढीला रहा है। अपने बेंचमार्क को बीट करने के लिए इसको थोड़ी मुश्किलें हो रही है। मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप इसमें SIPs कर रहे हैं तो आप उनको ज़रूर पॉज कर दीजिए, और इंश्योर करिए कि आपके स्मॉल कैप एलोकेशन का सिर्फ यही एक हिस्सा नहीं है, आप दूसरा भी एक स्मॉल कैप पोर्टफोलियो, 2 स्मॉल कैप पोर्टफोलियोज में अपनी एलोकेशन को डिवाइड करिए जो आप इसमें कर रहे थे। इंश्योर यही करना चाहिए कि ये फंड एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है काफ़ी इन्वेस्टर्स की जर्नी में, बिकॉज इसका प्रदर्शन पहले के टाइम पे अच्छा रहा है। हर एक अच्छे फंड का बुरा वक्त आता है, इसका बुरा वक्त थोड़े लंबे समय तक चल गया है, तो इसलिए इन्वेस्टर्स का पेशेंस भी काफ़ी टेस्ट हो गया है। तो हमें अपने लेवल पे यही करना चाहिए कि हम इसमें और इन्वेस्ट ना करें और दूसरे स्मॉल कैप्स की तरफ देखें।
1: Sneha, he also wanted to know that if you have a joint, if you're investing jointly in a particular mutual fund, what are the rules for taxation?
0: As far as my knowledge goes in terms of the holding aspect impacting any kind of taxation, I feel that does not really interfere with if you are making a capital gain from a particular mutual fund. अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं, आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहे हैं, तो जो आपका टैक्स का रेट रहता है वो 12.5%
1: नहीं,
0: ही
1: मेरे ख्याल
0: रहता
1: से ये
0: है।
1: जानना चाहते थे कि अगर दो लोग मिलकर एक, जैसे मैं फर्स्ट अगर होल्डर हूँ, मेरे साथ कोई और सेकंड होल्डर है, तो जब टैक्सेशन होगा, तो आई थिंक दैट इज ऑलवेज फॉर द फर्स्ट
0: फर्स्ट
1: पर्सन
0: होल्डर,
1: की लाइबिलिटी,
0: राइट,
1: राइट?
0: या
1: ओके, लेट्स टेक द कॉल फ्रॉम आर नेक्स्ट कॉलर. सुभाष हैज जॉइंड अस फ्रॉम फरीदाबाद. सुभाष, वेलकम टू मार्केट मंत्रा, प्लीज आस्क
2: हाँ
1: अ क्वेश्चन.
2: नमस्कार मैडम।
1: जी नमस्ते, सवाल पूछे.
2: हाँ मैडम, मैं ये पूछना चाहता था कि ये FIIs को गवर्नमेंट ने कुछ ये कैपिटल गेन टैक्स में रिबेट दिया है अभी, तो ये हमें डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को क्यों नहीं दे रही रिबेट ये कैपिटल गेन टैक्स में?
0: सुभाष जी, इसका जवाब तो आपको गवर्नमेंट से ही लेना पड़ेगा, बट मैं यहाँ पर एक एस्पेक्ट आपके दिमाग में डालना चाहूँगी कि जब फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ये रिबेट के माध्यम से वो और पैसा हमारे मार्केट में रहते हैं, इसका फ़ायदा डायरेक्टली एक्चुअली रिटेल इन्वेस्टर्स को ही होता है, हमारे नेशन को ही होता है। इसलिए कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी फ़ायदेमंद रहते हैं, कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे इक्विटी टैक्सेशन की, तो उसमें 1.25 लाख के बियॉन्ड ही आप पे टैक्स लगता है। अब ये वाले जो एस्पेक्ट्स हैं ये एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए हैं, और कुछ ऐसे ही बेनिफिट्स आप बाहर के इन्वेस्टर्स को भी देते हैं ताकि वो हमारी ही बढ़ोतरी में एक तरीके से
3: साझेदार बने.
0: बने।
3: बिल्कुल,
0: बिल्कुल।
3: मुंबई से हमारे साथ रत्नाकर जुड़ रहे हैं. रत्नाकर जी, कृपया अपना सवाल पूछिए.
4: हेलो, गुड इवनिंग मैडम.
3: गुड
4: मेरा
3: इवनिंग.
4: सवाल है कि ये जो महिंद्रा मैनुलाइट लिक्सी कैप फंड है, वो मेरे पास मोर देन 3-4 ईयर से है, 4 साल हो गए, तो उसमें 8% प्रॉफिट हो रहा है. तो ऐसे केस में जो 4-5 साल हो गए और 8-9% प्रॉफिट है, तो ऐसे म्यूचुअल फंड से बाहर होना, रिडक्शन करना अच्छा रहेगा क्या? ये एक सवाल है. और दूसरा, डिफेंस फंड में, डिफेंस के कौन से म्यूचुअल फंड है उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? थैंक यू.
1: Before Sneha, you answer this question, let me just share with all our listeners that do remember, listeners, that we do not answer company-specific, mutual fund-specific, questions. If you have a generic question regarding mutual funds in general, then yes, of course, do share your questions with us. But we will not be giving you answers for specific mutual funds. So I think Sneha, you can hear answer. You saying that if they have invested in a fund for about 3 to 4 years and they're getting a profit between 8 to 9%, so what is the how to proceed further?
0: राइट। सो अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट में हैं फॉर 3 to 4 ईयर्स और आपको प्रॉफिट, हम यहाँ बात कर रहे हैं 8% का, 8% ऐसे ही नहीं मिल जाता है,
1: जी
0: आप
1: जी
0: उसमें लगे रहते हैं तभी आपको वो मिलता है। तो रत्नाकर जी से मेरी सलाह ये रहेगी कि जब भी कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट हो जहाँ पे आपके अकॉर्डिंग 4 साल ही हुए हैं और आपको जो रिटर्न चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, तो अगर वो पैसा आपको चाहिए नहीं तो बिल्कुल आप उस फंड में बने रहिए या फिर उस इन्वेस्टमेंट में बने रहिए, क्योंकि फ़ायदा बढ़ता तभी है जब आप उसको ज़्यादा समय देते हैं। तो अगर उस पैसे की आवश्यकता नहीं है तो आप उसमें लगे रहिए, और जैसे हम जनरली बात करते हैं कि बस इतना इंश्योर करना चाहिए कि कोई भी टाइप ऑफ फंड आपके पोर्टफोलियो का एक बहुत बड़ी एलोकेशन ना बन जाए, क्योंकि फिर उसके उतार चढ़ाव का एक बहुत भारी आपके पोर्टफोलियो में इम्पैक्ट रहता है। सो उससे ज़रा हमें बचना चाहिए।
1: इन्होंने वैसे डिफेंस, पर्टिकुलर डिफेंस फंड्स की भी बात की थी, बट आई थिंक यू कैन

0: him about how whether it's the right time, and you know, like we were discussing at the beginning of the program for defense mutual funds.
1: So Ratnakar ji, aap isko is nazariye se dekh sakte hain ki jo ek category hoti hai diversified investments ki, jis jaise flexi cap ya multi cap categories, in categories mein defense stocks ka exposure fund manager apne अपने नॉलेज के हिसाब से रखते ही हैं, तो उनमें आपको ऑलरेडी ये एक्सपोजर्स मिलते ही हैं. बट अगर आपका एक बिलीफ है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में आप ज़्यादा एलोकेशन रखना चाहते हैं, तो बिल्कुल म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में आपको हर थीम हर सेक्टर के लिए एक्सपोजर मिल जाता है. बट बात वहीं आ जाती है कि डाइवर्सिफिकेशन का ज़रा हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी टाइप के कोई भी सेक्टर या थीम स्पेसिफिक एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो को ओवरटेक ना कर ले, तो हम उसे 5-10% ही रखें.
2: सारा खेल यहाँ कंपाउंडिंग का है.
1: बिल्कुल.
2: आगे बढ़ते हैं. नितिन दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं. नितिन जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
3: नमस्कार मैडम.
2: नमस्कार.
3: मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम बैंकों में अपना एफडी कराते हैं, तो वहाँ हमारे ये सजेशन देते हैं कि हम आपकी मीटिंग करा देते हैं म्यूचुअल फंड वालों से, तो वहाँ भी सेफ रहेगा और एफडी तो सेफ रहती है. तो आपकी राय से क्या हमें म्यूचुअल फंड में एंट्री कर लेनी चाहिए, बैंक के ब्रांचों के मीटिंग से हमें समझाएंगे कि आप ऐसा करिए ऐसा करिए, कितना बेनिफिट है म्यूचुअल फंड में और एफडी में तो बैंक में तो.
1: जी नितिन जी, आपने जो सवाल पूछा है ये मेरे हिसाब से हर इंडियन का सवाल होता है, क्योंकि हमारी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट हमारे पेरेंट्स भी जो करवाते हैं ना, वो हमेशा एक फिक्स डिपॉजिट ही रहता है. कि बैंक में ये वाला जो पर्सन है हम उस पर डिपेंड कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे एक फेस अटैच्ड होता है. और फिर एफडी जिस टाइप का प्रोडक्ट है जो आपको एक फिक्स्ड इनकम या रिटर्न दे देता है, उसका आपको एक फायदा दिखता है. तो मेरा कहना ये रहेगा, जब तक आप एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप एक छोटे रिटर्न के लिए सेटल हो रहे हैं और आप एम कर रहे हैं कि मतलब आप इसी में ही अपनी खुशी या फिर अपना वेल्थ जनरेशन का एस्पेक्ट देख रहे हैं. बट फायदेमंद ये रहता है कि जो भी प्रोडक्ट मार्केट लिंक्ड होता है, अब वहाँ पे फायदा भी होता है नुकसान भी होता है, इसलिए बेटर ये रहता है कि हम छोटे छोटे SIP के माध्यम से ये वाले काइंड ऑफ एक्सपोजर्स अपने पोर्टफोलियो में बिल्ड करें. अब व्हेन वी आर इन्वेस्टिंग वाया अ बैंक ब्रांच, तो हमें आप बिल्कुल वो मीटिंग करिए, बट इंश्योर बस इतना करना होता है कि वो आपको एक यूलिप नहीं बेच रहे हैं. तो आपको जो भी वो डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं या जो भी फंड के नाम दिखा रहे हैं, आप ये उनसे बिल्कुल डायरेक्टली पूछिए कि क्या ये यूलिप है. इसका फायदे का सौदा जो एक्चुअली होता है वो बैंक्स के लिए होता है, हमारे लिए नहीं होता है. तो आप बस इतना इंश्योर करिए दैट यू आर नॉट फॉलिंग फॉर अ फंड जिसके साथ साथ वो आपको इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे आप जो चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिल रहा है. आप यहाँ पे इंश्योरेंस के लिए नहीं आ रहे हैं, आप यहाँ पे आ रहे हैं कि आप एक डेट काइंड ऑफ प्रोडक्ट में थे विच इज FD. अब आप चाह रहे हैं कि आप डेट के बियॉन्ड जाएं, जिसमें म्यूचुअल फंड्स में हम हाइब्रिड फंड्स कहते हैं. तो जब वो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, आप उन्हें बता सकते हैं कि आप हमें अग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी के एक दो फंड से शुरुआत करवाइए, और आप इंश्योर करिए कि वो आपको वही वाले फंड्स दे रहे हैं. बिकॉज यूलिप्स जो होती हैं वो आपको एक ही तरीके की गारंटी देती है कि कुछ तो वो आपको इंश्योरेंस भी दे देंगे, इन्वेस्टमेंट भी दे देंगे, जब जरूरत आती है तब आपको नहीं पता कि ये दोनों आपको मिल सकते हैं या नहीं, क्योंकि इनमें एक तरीके का लॉक इन रहता है जो एक मिनिमम 5 साल का रहता है. इसके बहुत वेरिएंट्स आ चुके हैं, अलग अलग तरीके के लॉक इन्स आ चुके हैं. हो सकता है आप मिड इन्वेस्टमेंट वो निकाल पाए, बट कहने की बात बस इतनी है, जब भी कोई दो चीजों को जबरदस्ती मिक्स किया जाता है ना, तो जब उसकी असली में जरूरत होती है वो आपको पता नहीं है कि मिल सकती है या नहीं. तो अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स आप इंश्योर करिए वो आपको दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे कि हम जब इन स्टॉक्स की ओनरशिप लेते हैं तब आपको लगता है कि आप नेशन की डेवलपमेंट का पार्ट हैं, तो हाइब्रिड फंड से शुरुआत करिए आप.
0: जी, लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल. विमला इज कॉलिंग अस फ्रॉम दिल्ली. विमला, वेलकम टू मार्केट मंत्रा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन.
4: हाँ जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, म्यूचुअल फंड में जो यूनिट को फ्रीज करके लॉक करने का ऑप्शन आया है, उसे सेफ्टी कितनी बढ़ जाएगी?
0: अपना सवाल आप प्लीज रिपीट करेंगे. आप कह रही हैं कि म्यूचुअल फंड में एक लॉक इन पीरियड है, उससे हमारी सेफ्टी कितनी बढ़ेगी? आई थिंक दैट इज जस्ट व्हाट शी सेइंग, दैट देयर इज सम काइंड ऑफ अ लॉक इन म्यूचुअल फंड्स ऑप्शन, एंड देन शी वांट्स टू नो कि whether you know it's it increases it's a safer it basically as an investor is it good for her an investor.
1: So Vimla ji, agar hum aapka sawal sahi samajh paaye hain ki aap janna cha rahi hain ki lock in se kitna fayda rehta hai, to mutual funds mein ek hi category hai jahan pe lock in currently exists.

0: करता है जिसे टैक्स सेविंग ELSS कैटेगरी कहा जाता है. लॉक इन इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आपको हेल्प करता है कि आप जब मार्केट गिर रही है, आपने इसमें पैसे डाले हुए हैं, तो आप डर के मारे उसे निकाल ना लें. तो एक जब डिसिप्लिन बनाना चाहते हैं आप, तो एक इनमें ELSS में 3 साल का लॉक इन रहता है, और ये इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स रहते हैं. तो 3 साल के लिए इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में इन्वेस्ट करना एक अच्छा टाइम पीरियड माना जाता है. एक्चुअली वो 5 या बियॉन्ड होता है, बट कम से कम आप 3 साल के लिए भी अगर लगे रहते हैं तो ये लॉक इन आपको डिसिप्लिन में हेल्प करता है.
1: जयपुर से हमारे साथ जितेंद्र जुड़ रहे हैं. जितेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
2: मैडम, दो प्रश्न है. एक तो जैसे क्लिक एनर्जी कोई फंड आया हुआ है, मतलब सेक्टोरियल फंड है,
3: जितेंद्र जी, आपके एक तो सवाल में हमारे पास शोर बहुत आ रहा था. दूसरी बात, जैसे भी हमने कार्यक्रम में शुरू में बताया था कि हम स्पेसिफिक फंड से जुड़े सवालों के हम जवाब नहीं दे सकते हैं. अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बात जनरल करनी है तो आप दे सकते हैं. वैसे generally, if I'll just ask you one question, you know, Sneha, that before we take the next news, that while we're talking of mutual funds, you know, there are some people who believe that when the markets are low, that's the right time to enter. Some people feel that when the markets are at peak, they will give you a better return. What is your opinion on that?
1: और मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी, और कुछ लोगों को ये भी लगता है कि जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट है वो एक तरीके से शेयर बाज़ार की तरह वो उसे उसी नज़र से देखते हैं कि हमारा पैसा डूब जाएगा. तो उस पर ये जो मिथ्या है, स्नेहा, आप इसे भी इस पर भी से पर्दा उठाइए.
0: जी, तो
3: स्नेहा सवाल ज़रूर करता, बट इसके बीच हमारे साथ दूसरे एक श्रोता जुड़ गए हैं. दीपक इज कॉलिंग फ्रॉम सोनीपत. दीपक, प्लीज़ वेलकम टू मार्केट मंथ, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन.
4: मैम, गुड इवनिंग. मैम
3: जी, गुड इवनिंग. सवाल पूछें.
4: मैम, मेरा सवाल है, मेरे कुछ पैसा डेप्ट म्यूचुअल फंड में पड़ा है, SBI लिक्विड फंड में, 15-1 लाख रुपए है, और मेरी 4 SIP चल रही है SBI में ही. एक स्मॉल कैप है, एक कॉन्ट्रा है, एक निफ्टी 50 है, और एक और कौन सी है, मतलब मिड कैप में है, फ्लेक्सी है एक. ठीक है, तो एक तो मेरा सारा का सारा ये जो चल रहा है ये SBI के फंड हाउस में से ही चल रहा है, तो एक तो एक कितना सेफ है, और 3,000 की एक गोल्ड और सिल्वर में भी चल रही है, तो एक कितना सेफ है मेरे लिए, और इसमें मैं क्या चेंज कर सकता हूँ अगर मुझे करना हो तो. सारा SBI फंड हाउस में ही है.
0: बिल्कुल दीपक जी, मुझे आपकी परेशानी आपके प्रश्न में ही दिख रही है कि आपको खुद पता है कि आप एक्चुअली एक ही AMC में इन्वेस्टेड हैं. अब क्योंकि आप सोचिए कि इससे डर आपको ऑलरेडी है, इसलिए इसका जवाब इसी में है कि आप और एक दो AMCs में इन्वेस्ट करें ताकि आपका ये जो डर है वो कम हो पाए. और कभी ऐसा होता है कि कुछ AMC लेवल ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे उनके सारे ही इक्विटी फंड्स अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट पोर्टफोलियो में एक ऐसा हो जाता है कि आपको काफ़ी निराशाजनक एक्सपीरियंस हो जाता है. जबकि ओवरऑल म्यूचुअल फंड्स का एक्सपीरियंस लंबे समय में हमने देखा है कि अच्छा ही रहता है, आप अपने गोल्स उससे अचीव कर पाते हैं. तो मेरा आंसर यही रहेगा आपके लिए, या सजेशन यही रहेगा कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स जिसमें जो AMC आप SBI कह रहे हैं उसके बियॉन्ड भी कुछ AMCs में इन्वेस्ट करें. अब वो आप, अगर आपके पास सरप्लस है, आप नया फंड का चुनाव करके कर सकते हैं, या फिर जो आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उसमें अपनी SIPs पॉज करके वो पैसा अपने किसी और फंड में डाल सकते हैं.
3: राइट,
1: अपने सवाल पर वापस लौटते हैं. अनुभव
3: जी, ज़रूर.
1: मैं और अनुभव आपसे यही पूछना चाह रहे थे कि किस तरीके से ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो शेयर मार्केट की तरह नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में जिनकी फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी ज़्यादा नहीं है, जो रोज़मर्रा में नहीं जान पाते हैं इन चीज़ों को, उन्हें ये लगता है कि हम अगर इसमें निवेश करेंगे तो शायद हमारा पैसा डूब जाए. लेकिन म्यूचुअल फंड्स किस तरीके से अलग है शेयर मार्केट से और किस तरीके से उसी में समाहित है, ये भी आप हमें बताएं.
0: बिल्कुल, तो किस तरीके से अलग है वो उसके नाम में ही हो जाता है कि वो कह रहे हैं एक तरीके का म्यूचुअल सामूहिक फंड है ये, जिसका मतलब ये हो जाता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टर्स एक ही फंड में रहकर डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर पाते हैं. यहाँ पे मैं इक्विटी फंड्स की बात कर रही हूँ. तो वाइल आप इन्वेस्टेड हैं शेयर बाजार में, बट आप इस तरीके से इन्वेस्टेड हैं कि आप एक ही कंपनी के उतार चढ़ाव में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जिसका मतलब ये हो जाता है कि जब कोई एक कंपनी नीचे जा रही है आपका सारा पैसा नहीं डूब रहा है, क्योंकि फंड ने एक ही कंपनी में ना करके डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स की ओनरशिप आपको दी हुई है,

0: और ये मिलती भी आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट के थ्रू है वाया फंड मैनेजर. तो इस तरीके से हम डिफरेंट हो जाते हैं.
1: बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं
2: जी. लेट्स टेक द नेक्स्ट न्यूज. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट ऑफ सेशल्स पैट्रिक हर्मिनी हेल्ड बायलैटरल टॉक्स इन विक्टोरिया दिस आफ्टरनून. बोथ लीडर्स रिव्यूड द फुल स्पेक्ट्रम ऑफ बायलैटरल कोऑपरेशन एंड एक्सचेंज्ड व्यूज ऑन रीजनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट. सेवरल अग्रीमेंट्स वर एक्सचेंज्ड इन अ रेंज ऑफ फील्ड्स इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, फाइनेंस, स्पेस एंड हेल्थ. एड्रेसिंग द जॉइंट प्रेस मीट, प्राइम Mr. Modi said both India and Seychelles will continue to explore new opportunities for the industries of the two countries. He added that work will also be done to enhance connectivity between the two nations. Prime Minister Modi said digital technology is an effective medium to bridge the distance between the two countries. He said India's successful experience in digital public infrastructure will be shared with Seychelles. He expressed happiness that today an MOU is being signed to implement UPI in Seychelles.
1: और भोपाल से हमारे साथ शंकर जुड़ रहे हैं. शंकर जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल पूछिए.
3: नमस्ते मार्केट मंत्री टीम. नमस्ते नेहा मैडम. मैडम, ये एक्टिव मोमेंटम फंड, व्हाई आर दे डूइंग सो वेल? क्या इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए? स्मॉल कैप की जगह अभी थोड़ा इससे लगाएं. एक्टिव मोमेंटम फंड इसी दौरान अच्छा करेंगे, क्योंकि कुछ स्टॉक बढ़ते रहते हैं, कुछ स्टॉक नहीं बढ़ते हैं, तो उसमें वो अच्छा कर रहे हैं, या फिर हर टाइम में जैसे मार्केट बढ़ने की तरफ चलने लगा है, FIA का पैसा आने लगा है, तो उसमें भी वो अच्छा करेंगे, या फ्लेक्सी कैप की तरफ ही ध्यान दें, या थोड़ा सा पैसा एक्टिव मोमेंटम फंड जैसे मोतीलाल का है उसमें लगाया जाए, या कोटक के भी एक्टिव मोमेंटम फंड, इसके बारे में बताइए प्लीज. थैंक यू
0: जी. सर, जहाँ पे भी ये शब्द आ जाता है मोमेंटम, तो उसमें एक तरीके का उतार चढ़ाव का जो एस्पेक्ट होता है ना, वो बिल्ड हो जाता है, क्योंकि मोमेंटम फंड्स यूजुअली उनमें इन्वेस्ट करते हैं, इस टाइप की स्ट्रैटेजी बिल्ड करते हैं कि जो स्टॉक वो बिलीव कर रहे हैं कि अब रैली ही करेगा, और ऑलरेडी रैली कर चुका है और अब आगे रैली ही करेगा. तो इसका यूज केस इस तरीके से हो जाता है कि जब मार्केट इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के फेवर में नहीं है, ऐसा कोई स्टॉक आपको नहीं मिल पा रहा है, उस टाइम पे आपको जो एक रेड दिखता है अपने पोर्टफोलियो में, वो काफ़ी इम्पैक्ट कर सकता है. सो आपने जैसे कहा कि हम फ्लेक्सी कैप में ही इन्वेस्टेड रहें या थोड़ा सा इन फंड्स में करें, तो जैसे कि हम अभी एक पहले श्रोता को कह रहे थे कि अगर आप ऐसे किसी स्ट्रैटेजी में बिलीफ रखते हैं, तो आप इंश्योर करिए दैट योर कोर पोर्टफोलियो इज स्टिल इन डाइवर्सिफाइड यू नो फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप कैटेगरीज, और ऐसे टाइप के एक्सपोजर्स आप लिमिटेड रखें इन योर ओवरऑल पोर्टफोलियो टू अ लिमिट ऑफ 5-10%.
2: Next caller is Virendra from Karnataka. Virendra, welcome to Market Mantra, and I would you know request you to keep your question short.
4: Madam.
2: Batayen.
4: Neha madam.
0: Haan ji.
4: I am doing SIP in 4 mutual funds right now. HDFC, like HDFC Balanced Advantage, Parag Parekh Flexi Cap, then Bandhan Small Cap, and LWS Mid Cap. Is it diversified enough?
0: Right. Virendra, seems like your portfolio is quite diversified, because you have a core portfolio built from flexi cap kind of categories. Even BAF is a diversified strategy, and it ensures that you get both asset classes, equity as well as debt. And while you can, you are having a satellite allocation from mid and small cap. So yeah, seems like you're good to go.
1: आगे बढ़ते हैं. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPI ने जून में अब तक 53,022 करोड़ रुपए के भारतीय शेयर बेच दिए हैं. हालांकि महीने के दूसरे हिस्से में FPI की चुनिंदा खरीदारी के कारण बिकवाली का दबाव काफी कम हुआ है. इस बीच सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने इस महीने की शुरुआत में विदेशी निवेशकों की रुचि भारतीय बाजार में फिर से लाने के लिए सरकारी प्रतिभूति बाजार को मजबूत करने और ऋण बाजार को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. इस कारण जून में भारतीय ऋण बाजार में रिकॉर्ड निवेश आया है. डिपॉजिटरी डेटा के अनुसार जून में अब तक डेट जनरल लिमिट में 24,518 करोड़ रुपए का निवेश आया है. पिछले हफ्ते सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट जारी रही. सप्ताह के पहले 3 दिनों में कीमतों में गिरावट आई. सोना नवंबर 2025 के बाद के अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया था, लेकिन अमरीकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों के कारण बाजार सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा और सप्ताह के अंत में इसमें सुधार देखा गया. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना वायदा सप्ताह में 2.1% गिरकर 144,162 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं सितंबर अनुबंध वाली चांदी वायदा कारोबार में लगभग 6.5% गिरकर 2,23,472

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चारु सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जलवायु कार्रवाई उचित, उत्तरदायित्वपूर्ण और समान होनी चाहिए। सेशल्स के राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करते हुए आज प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जलवायु न्याय का मूल तत्व है। उन्होंने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां विकास समग्रता में हो और जहां अंतर्राष्ट्रीय संस्थान समसामयिक वास्तविकताओं को परिलक्षित करें। श्री मोदी ने कहा कि भारत के विजन महासागर में सेशल्स का विशेष स्थान है और ये प्रतिबद्धता पहले से कहीं अधिक ज्यादा मजबूत हुई है।
1: I came here because I believe that Seychelles occupied a special place in India's vision for the Indian Ocean. Today, as I return here after a decade, that conviction is stronger than ever. And I'm delighted to join you as you celebrate 50 years of your independence. Congratulations to you and the people of Seychelles on this special occasion.
0: श्री मोदी ने कहा कि मानचित्र में सेशल्स हिंद महासागर के द्वीपों के समूह के रूप में दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि भारत इसे ऐसे राष्ट्र के रूप में देखता है जो अपनी सीमाओं से परे हैं। श्री मोदी ने कहा कि ये विशेष सम्मान है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित कर रहा है।
1: President Armini and the people of Seychelles for honoring me with the guardian of the blue horizon earlier today. It will encourage all those who are making sustained efforts for environment conservation. I bring with me the warm greetings and best wishes of 1.4 billion people of India.
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स की राजकीय यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमाइनी ने प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध सभी देशों को समर्पित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जनभागीदारी की शक्ति भारत की सबसे बड़ी मजबूती है। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी पर अपने कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि ये भावना उस समय एक बार फिर दिखाई दी जब उन्होंने पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए नागरिकों से कुछ निश्चित उपाय अपनाने को कहा। श्री मोदी ने लोगों से स्वर्ण खरीद से बचने, गैर जरूरी विदेश यात्रा टालने और कुछ समय के लिए कार पूलिंग की अपील की थी। उन्होंने किसानों से रसायन मुक्त कृषि अपनाने, कृषि भूमि का संरक्षण करने और प्राकृतिक उर्वरकों को अधिकतम उपयोग करने को भी कहा था। प्रधानमंत्री ने अपनी अपील का समर्थन और सहयोग करने के लिए नागरिकों का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मानवीय रचनात्मकता का संरक्षण करने के बारे में भी बात की। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित भारत में गांव की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में उन्होंने कहा कि विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। ये कार्रवाई शुक्रवार को होर्मुज़ जलडमरू मध्य में एक तेल टैंकर पर हुए ड्रोन हमले के जवाब में की गई। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। अगले ग्रुप मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का ये अंतिम मुकाबला है। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया पर जीत हासिल करनी होगी। भारत के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में ताज़ा समाचार मिलने तक आयरलैंड ने 13 ओवर में 3 विकेट पर 87 रन बना लिए। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ने एबीसी मेंस वॉलीबॉल कप का कांस्य पदक जीत लिया है। अहमदाबाद में कांस्य पदक के लिए खेले गए मुकाबले में भारत ने बहरीन को 3-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi today stated that climate action must be guided by fairness, responsibility and equity. In his special address to the National Assembly of Seychelles, Prime Minister said this is the essence of climate justice. He emphasized that Seychelles and India both seek a world where development is more inclusive and where international institutions reflect contemporary realities.
1: Seychelles and India both seek a world where development is more inclusive. We both seek a world where international institutions reflect contemporary realities. We believe that our shared future must be shaped collectively, inclusively and fairly.
2: Mr. Modi said Seychelles occupies a special place in India's vision for the Indian Ocean and that conviction is stronger than ever. He said the Indian Ocean does not separate Indian Seychelles but connects the two countries. He added that it will encourage all those who are making sustained efforts for environment conservation.
1: Our vision is captured in the idea of Mahasagar, mutual and holistic advancement for security and growth across regions, Mahasagar. This vision recognizes that our futures are interconnected and interdependent, and we will continue to work together for a safer and more secure Indian Ocean region.
2: Prime Minister said it is a special honor to stand before everyone as the first Indian Prime Minister to address the National Assembly. He also thanked President and the people of Seychelles for honoring him with Seychelles' highest distinction, the Guardian of the Blue Horizon, earlier in the day. Prime Minister Modi has said that the power of public participation in nation building is one of India's greatest strengths. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani today, Mr. Modi said this spirit was once again evident after appeal to citizens to adopt certain measures in view of the prevailing warlike situation in West Asia. Mr. Modi had urged people to avoid buying gold, postpone non-essential foreign travel, and

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

0: தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள் டெய்லி ஏஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी, फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत को आयरलैंड से 155 रन का लक्ष्य मिला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो और जहां साझेदारी आकार पर नहीं बल्कि परस्पर सम्मान और विश्वास पर आधारित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण हिंद महासागर को संभावनाओं का सागर बनाना है।
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
1: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने उद्योगों के लिए नई संभावनाओं की तलाश जारी रखेंगे। दोनों पक्षों ने कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
2: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल्स के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल्स में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
1: सेशल्स के राष्ट्रपति हर्मिनी ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण बनी हुई है। दोनों देशों ने समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और सीमा पार अपराध का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को ये सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण और

0: जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दक्षिण विश्व, विशेष रूप से द्वीपीय राष्ट्र, जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हैं। उन्होंने निष्पक्षता, उत्तरदायित्व और समानता के साथ जलवायु कार्रवाई का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि यही जलवायु न्याय का मूल तत्व है। श्री मोदी ने डिजिटल नवाचार के क्षेत्रों में भारत सेशल्स सहयोग को मजबूत करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की चिंताओं पर सेशल्स के साथ काम करना जारी रखेगा।
1: सेशल्स एंड इंडिया बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर डेवलपमेंट इज मोर इंक्लूसिव। वी बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट कंटेम्पररी रियलिटीज। वी बिलीव दैट आवर शेयर्ड फ्यूचर मस्ट बी शेप्ड कलेक्टिवली, इंक्लूसिवली एंड फेयरली।
0: प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीपराष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान प्रधानमंत्री के जलवायु कार्रवाई, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है। गृहमंत्री ने कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। श्री जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ाने में श्री मोदी की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच हुई वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है। श्री मिश्री ने विक्टोरिया में संवाददाताओं को आज बताया कि दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण, डिजिटल परिवर्तन, सतत विकास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की शक्ति भारत की सबसे बड़ी ताकत है। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी से कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि ये भावना उस समय एक बार फिर दिखाई दी जब उन्होंने पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए नागरिकों से कुछ निश्चित उपाय अपनाने को कहा।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मानवीय रचनात्मकता का संरक्षण करने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे हासिल करने का समाधान खोज लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि

0: पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाएं बनाने के साथ साथ ये सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है कि उनका लाभ प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांव की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
1: इस साल बजट प्रावधान है 1,51,282 करोड़ रुपया केंद्र और राज्य का मिला के, ये 1,50,000 करोड़ से ज्यादा रुपया मजदूरों को मजदूरी देने में तो काम आएगा ही। इससे आप गांव की हालत पूरी तरह से बदल सकते हैं। 5 साल में 7,50,000 करोड़ लगभग लगे, 2,86,000 पंचायत है, एक पंचायत के हिस्से में कितना पैसा आएगा आप कल्पना कीजिए।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत देश को स्वस्थ और नशा मुक्त बनाने का आह्वान किया है। वे आज बेंगलुरु में राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह और नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिन की जम्मू कश्मीर यात्रा पर आज श्रीनगर पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान वे कश्मीर घाटी में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव प्रक्रिया की जमीनी स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा भी करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का कहर जारी है। फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य सहित कई देशों ने सप्ताहांत में तापमान के नए रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि बुधवार से अब तक भीषण गर्मी के कारण लगभग 1,000 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 85% बुजुर्ग थे।
2: फ्रांस के स्वास्थ्य विभाग ने आज एक बयान में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में इले डी फ्रांस, नोवेल एक्विटाइन, ब्रिटनी, सेंटर वॉल डे लोइरे, नॉर्मैंडी और पेस डे ला लोइरे शामिल हैं। फ्रांस के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। पेरिस में भीषण गर्मी के कारण एफिल टावर और लूवर संग्रहालय को भी शाम को जल्द ही बंद कर दिया जा रहा है। जर्मनी और चेक गणराज्य में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। भीषण गर्मी के कारण कुछ हिस्सों के जंगल में आग लगने से आपातकालीन सेवाओं पर दबाव बढ़ा है। हंगरी में डेन्यूब नदी में बढ़ते तापमान से एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रभावित हुआ है, जिससे कुछ रिएक्टरों के संचालन पर असर पड़ा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: फ्रांस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आज एक विमान दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। आपात सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको से संबंधित एक हेलीकॉप्टर आज हॉर्मूज जल डमरू मध्य के पश्चिम में स्थित रास तनूरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई। असम के धेमाजी जिले में लगातार कई दिनों से हो रही तेज बारिश और अरुणाचल प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। सिमेन नदी में आए उफान के कारण लगभग 60 परिवार बेघर हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: असम के धेमाजी जिले में सिमेन नदी की उफनती धारा ने एक महत्वपूर्ण रेलवे पुल के हिस्से को बहा दिया है, जिसे क्षेत्र की रेलवे संपर्क व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई है और रेल सेवाएं ठप्प हो गई है। राज्य आपदा मोचन बल SDRF की टीमें दिमो पंचायत के अंतर्गत उज्जवलपुर गांव में राहत और बचाव अभियान चला रही है, जहां फंसे 60 परिवारों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। अब तक किसी के हताहत होने या जानहानि की सूचना नहीं है। हालांकि बाढ़ से संपत्ति और पशुधन को भारी नुकसान पहुंचा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर पर 9 रन बना लिए हैं। उधर बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में जीत के लिए 155 रन के जवाब में भारत ने बारिश के कारण खेल रोके जाने तक 8 ओवर में 4 विकेट पर 54 रन बना लिए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने का एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल्स के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल्स में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू ओरिजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे थे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांवों की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्सों सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
2: इस साल बजट प्रावधान है 1,51,282 करोड़ रुपया केंद्र और राज्य का मिला के, ये 1,50,000 करोड़ से ज्यादा रुपया मजदूरों को मजदूरी देने में तो काम आएगा ही। इससे आप गांव की हालत पूरी तरह से बदल सकते हैं। 5 साल में 7,50,00,000 करोड़ लगभग लगे, 2,86,000 पंचायत है, 1 पंचायत के हिस्से में कितना पैसा आएगा आप कल्पना कीजिए।
0: भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। पाकिस्तान के कराची में सिंध रेंजर्स के कंपाउंड पर आतंकवादियों के बड़े हमले में पैरामिलिट्री फोर्स के 4 जवान मारे गए थे। फ्रांस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आज एक विमान दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। आपात सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। यूरोप में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, जिसमें फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य सहित कई देशों ने सप्ताहांत के तापमान के नए रिकॉर्ड दर्ज किए। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि बुधवार से अब तक भीषण गर्मी के कारण लगभग 1,000 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 85% बुजुर्ग थे। बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दूसरे टी20 क्रिकेट मैच में जीत के लिए 155 रन के जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 18वें ओवर में 7 विकेट पर 119 रन बना लिए हैं।

0: came in. Earlier, opting to bat first, India posted 170 runs, losing 4 wickets in the stipulated 20 overs. Skipper Harmanpreet Kaur scored 56 in 27 balls. For Australia, skipper Sophie Molyneux bagged 3 wickets. And with that, we end this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं रत्ना पांडे। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया। सऊदी अरब में रास तनूरा में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 14 लोग मारे गए। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी। फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉकआउट चरण की शुरुआत आज रात अमेरिका के कैलिफोर्निया में दक्षिण अफ्रीका और कनाडा के बीच मुकाबले से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो और जहां साझेदारी आकार पर नहीं बल्कि परस्पर सम्मान और विश्वास पर आधारित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण हिंद महासागर को संभावनाओं का सागर बनाना है।
2: मेरी सेशल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
1: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है। दोनों पक्षों ने कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
2: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
1: सेशल्स के राष्ट्रपति हरमीनी ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण बनी हुई है। दोनों देशों ने समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और सीमा पार अपराध का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ ब्लू होराइजन के लिए राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी की सेशल्स की जनता का आभार व्यक्त किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान प्रधानमंत्री के जलवायु कार्रवाई, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि ये सम्मान

0: दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। श्री जयशंकर ने कहा कि सम्मान जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ाने में श्री मोदी की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह सम्मान श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव, मनोहर लाल, डॉ जितेंद्र सिंह और अन्य मंत्रियों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी के बीच हुई वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है। श्री मिश्री ने विक्टोरिया में संवाददाताओं को बताया कि दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण, डिजिटल परिवर्तन, सतत विकास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत ने आज कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान द्वारा लगाए गए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राजनीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। पाकिस्तान के कराची में सिंध रेंजर्स के कंपाउंड पर आतंकवादियों के एक बड़े हमले में पैरामिलिट्री फोर्स के 4 जवान मारे गए थे। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको से संबंधित एक हेलीकॉप्टर आज होर्मुज जल डमरू मध्य के पश्चिम में स्थित रास तनूरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण अरामको ने शुक्रवार को लगभग 4 महीने बाद खाड़ी में स्थित अपने रास तनूरा टर्मिनल पर फिर से कच्चे तेल की लोडिंग शुरू की थी। मंत्रालय ने कहा कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की लहर जारी है, जिसमें फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य सहित कई देशों ने सप्ताहांत में तापमान के नए रिकॉर्ड दर्ज किए। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि बुधवार से अब तक भीषण गर्मी के कारण लगभग 1000 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 85% बुजुर्ग थे।
1: फ्रांस के स्वास्थ्य विभाग ने आज एक बयान में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में इले डी फ्रांस, नोवेल एक्विटाइन, ब्रिटनी, सेंटर वॉल डे लोइरे, नॉर्मैंडी और पेस डे ला लोइरे शामिल हैं। फ्रांस के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। पेरिस में भीषण गर्मी के कारण एफिल टावर और लूवर संग्रहालय को भी शाम को जल्द ही बंद कर दिया जा रहा है। जर्मनी और चेक गणराज्य में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। भीषण गर्मी के कारण कुछ हिस्सों के जंगल में आग लगने से आपातकालीन सेवाओं पर दबाव बढ़ा है। हंगरी में डेन्यूब नदी में बढ़ते तापमान से एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रभावित हुआ है, जिससे कुछ रिएक्टरों के संचालन पर असर पड़ा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: ऑस्ट्रेलिया सरकार ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर सोशल मीडिया प्रतिबंध का पालन नहीं करने वाली कंपनियों पर जुर्माना दोगुना करने का प्रस्ताव रखा है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि प्रौद्योगिकी कंपनियां इस प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर रही हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण की शुरुआत आज रात से हो रही है। पहला मैच दक्षिण अफ्रीका और कनाडा के बीच अमेरिका के कैलिफोर्निया में राउंड ऑफ 32 के पहले मुकाबले में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। भारत के 171 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सऊदी अरब में

0: Please stand by for the news in Hindi and English.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर

0: महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत द्वारा दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को घर और समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। पाकिस्तान के कराची में सिंध रेंजर्स के कंपाउंड पर आतंकवादियों के एक बड़े हमले में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मारे गए थे। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। भारत के 171 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Amrit Bhushan. Prime Minister Narendra Modi today said India envisions an Indian Ocean where maritime security

0: நேயர்கள் இதுவரை கேட்டு ரசித்த நிகழ்ச்சி திரைகாணம். சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தி ஆங்கில செய்தி அறிக்கை டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: சமாச்சார் கே சாத் மே ரத்னா பாண்டே. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत भी भाग ले रहे हैं।
2: Comme qui descend qui peut voir un

0: इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। महाराष्ट्र के भिवंडी के सत्र न्यायालय ने शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जांच अधिकारियों को आशंका है कि इस मामले के तार कई राज्यों में फैले परीक्षा धांधली गिरोह से जुड़े हो सकते हैं। दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने दवाओं, शल्य चिकित्सा के सामान और चिकित्सा उपकरणों की खरीद में कथित अनियमितताओं के मामले में 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अधिकारियों में तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाओं की महानिदेशक डॉ वत्सला अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के उप नियंत्रक लेखा नीरज चोपड़ा शामिल हैं। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। भारत के 171 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस हार के साथ ही भारतीय टीम का इस विश्व कप में अभियान समाप्त हो गया। बेलफास्ट में आयरलैंड ने भारत को दूसरे 2020 क्रिकेट मैच में बड़ा उलटफेर करते हुए 1 रन से हराकर श्रृंखला 2-0 से जीत ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अमृत भूषण। Prime Minister Narendra Modi participated as the chief guest at Seychelles' 50th National Day celebrations. The occasion also showcased participation of 2 Indian Navy ships and a contingent of the Indian Armed Forces, reflecting the deep bonds of friendship and maritime cooperation between the two nations. Earlier, Mr. Modi addressed a joint press meet after delegation-level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria. Mr. Modi said India envisions an Indian Ocean where maritime

0: नमस्कार श्रोता, स्वर धरोहर कार्यक्रम में मैं आशुतोष
1: और मैं निशा आपका स्वागत करते हैं।
0: श्रोताओं, संगीत केवल धुन नहीं, भावनाओं की भाषा है और भारत के संगीत इतिहास में कुछ नाम ऐसे जिन्होंने उस भाषा को नया आकार दिया। एक ऐसे संगीतकार जिसने भारतीय फिल्मों की धुनों को एक अलग पहचान दिलाई और सबके दिलों में जगह बनाई, इस महान व्यक्ति का नाम है अनिल कृष्ण बिस्वास।
1: आज हम उनके संघर्षों, उनके प्रयोगों और उनके योगदान के बारे में जानेंगे। वे सिर्फ संगीतकार नहीं थे, वे उस संगीत की पहचान थे जिसे पीढ़ियां नहीं भूल सकती।

0: शोरगुल न मचा धीरे धीरे।
1: अनिल कृष्ण बिस्वास का जन्म बारिसाल पूर्वी बंगाल में 7 जुलाई 1914 को था, जो अब बांग्लादेश में है। बचपन से ही वे संगीत, थिएटर और वाद्य यंत्रों, विशेषकर तबला के प्रति आकर्षित थे। बचपन में ही उन्होंने थिएटर में अभिनय करना और गीत सीखना शुरू कर दिया था।
2: बचपन में मैं सुन सुन के बहुत गाया करता था, सुन सुन के काफी, और नकल भी बहुत कर लिया करता था। जिसको जहाँ जो खूबसूरत चीज सुनी वो नकल करके उड़ा के बैठ के गा लिया करता था। हमारे वहाँ बहुत बड़े उस्ताद माने जाते थे, खान साहब बादल का। उन्होंने सुना कि ये लड़का बहुत अच्छा गाता है, और उनके एक शागिर्द की एक चीज उड़ा के मैंने एक जगह में गाया था। उन्होंने जाके गायत कर दी, देखिए साहब, ये अनिल हमारी चीज चुराता है और गाता फिरता है। तो उन्हें बहुत प्यार से बुलाया, मुझे बुलाया, कहने लगे कि आओ बेटा, तुम्हारे गंडे बनते, तुम इतने होनहार लड़का हो और तुम सीख कर गाओगे तो और अच्छे हो जाओगे।
1: अपनी मैट्रिक की पढ़ाई करते समय अनिल बिस्वास भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए थे, जिसकी वजह से उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा और इस वजह से उनकी पढ़ाई भी ठीक से पूरी नहीं हो सकी। सन 1930 में अपने पिता की मृत्यु के बाद वे आगे की गिरफ्तारी से बचने के लिए भेष बदलकर कलकत्ता चले गए।
3: कोलकाता में शुरुआत में नागों के लिए संगीत रचना करके उन्होंने अपनी पहचान बनाई, फिर रंगमंच से जुड़ गए। वहाँ उन्होंने एक अभिनेता, गायक और सहायक संगीत निर्देशक के रूप में कार्य किया। उन्होंने यहाँ कई मंच प्रस्तुतियों में गायन और अभिनय किया। इस समय तक वे ख्याल, ठुमरी और दादरा जैसी गायन शैलियों में पारंगत हो चुके थे। अनिल बिस्वास ने गजलों के बारे में बताते हुए कहा था,
2: चार किस्म से गजलें गाई जाती हैं। जो लोग पढ़ते हैं वो तरन्नुम नुमा पढ़ते हैं, कुछ लोग इसे अदायगी के साथ में जैसे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड जैसे जिसको कहते हैं वो गाते हैं, और फिर कव्वाल लोग गजलों को एक खास अदा से कहते हैं, और कुछ लोग उसको इमोशनल ढंग से कहते हैं। ये चारों किस्में मैं आपको एक एक करके सुनाने की कोशिश करूँगा।

0: अनिल दा ने हिंदुस्तान रिकॉर्डिंग कंपनी के साथ भी गीतकार गायक और संगीतकार के रूप में काम किया। वहाँ कुंदन लाल सहगल और सचिन देव बर्मन भी काम करते थे। बाद में उन्हें प्रसिद्ध कवि काज़ी नज़रुल इस्लाम के साथ काम करने का भी मौका मिला। इससे वे संगीत निर्देशक हीरेन बोस की नज़र में आए और उनके ही कहने पर 1934 में बम्बई चले गए।
1: जब प्लेक सिंगिंग ने भारतीय सिनेमा में अपना कदम रखा ही था, तब अनिल बिस्वास ईस्टर्न आर्ट सिंडिकेट में जुड़े। उन्होंने बाल हत्या और भारत की बेटी के लिए संगीत बनाया। उन्होंने फिल्म धर्म की देवी में बैकग्राउंड म्यूजिक भी दिया, अभिनय किया और गाया भी। 1936 में वे सागर मूवी टोन से जुड़ गए। अनिल दा ने उस्त करीम खां के गायन से प्रेरणा लेकर अपने तरीके से एक गीत की रचना की थी। आइए सुनते हैं वो गीत।

0: इस गाने में वो सरगा भी आता है,
1: सा नि द स नि द प म ग रे स नि द स र ग प म ग रे ग स र ग स रे प म ग ग म प द स र स र ग ग रे स नि द प रे स नि द प द प म ग रे यावत चैन।
0: इस जगह को देखिए अपने तरीके

0: श्रोताओं, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सन 1937 में महबूब खान की फिल्म जागीरदार ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में एक प्रमुख संगीतकार के रूप में स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने कई प्रमुख फिल्मों में संगीत दिया, जिनमें वन, अली बाबा और रोटी शामिल हैं। सन 1943 में आई फिल्म किस्मत में भी इन्होंने संगीत दिया और ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही।
1: 3 साल तक ये फिल्म चलती रही। उस वक्त तो भाई असल में ये लता, ये रफी, ये लोग थे नहीं, मगर हमारे पास सब ऐसे बड़े अच्छे कलाकार थे। आमिर बाई कर्नाटकी मरहूम जो गुजर गई है, मेरी बहन उनका नाम मिसेस पारुल घोष, वो गाया करती थी। राजकुमारी करके एक आर्टिस्ट हुआ करते थे। मर्दों में उस नीटर से साइकिल निकला था। मराठी फिल्मों में से बहुत सारे लोग निकले थे। अमीर भाई ने सारे ही गाने गाए थे। मेरी बहन ने एक गाना गाया था जो फोक म्यूजिक पे था, और दूसरे सारे गाने जो है ना वो अमीर भाई ने गाया था। तो

0: इस फिल्म में अशोक कुमार और मुमताज शांति ने अभिनय किया था। इस फिल्म का गाना दूर हटो ऐ दुनिया वालों आज भी देशभक्ति के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है।
1: इसी फिल्म का एक और गीत धीरे धीरे आरे बादल भी एक क्लासिक गीत बन गया। अनिल विश्वास ने पार्श्व गायकों जैसे मुकेश और तलत महमूद को भी प्रमुख गीतों को गाने का मौका दिया और लता मंगेशकर के करियर को भी बढ़ावा दिया। लता मंगेशकर ने आकाशवाणी को दिए गए एक साक्षात्कार में बताया था कि कैसे अनिल विश्वास ने उन्हें गाने में सही तरीके से सांस लेने की तकनीक सिखाई।
2: मैंने अनिल दा के साथ बहुत गाने गाए हैं और बहुत अच्छी तरह से सिखाते थे और कैसे क्या होना चाहिए, किस तरह सांस लेनी चाहिए, छोड़नी चाहिए, ताकि माइक में सांस की आवाज ना आए जो आती है लोगों की, तो वो मुझे उन्होंने सिखाया। और बैठे रहते थे, एक एक छोटी छोटी बातें समझाते थे, अच्छा लगता।

0: औरत और प्यार से मेरे साथ बात करते थे जैसे कोई घर का ही हो।
1: सन 1946 में अनिल विश्वास ने बॉम्बे टॉकीज छोड़ दिया और स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू किया। अपनी पत्नी आशा लता विश्वास के वैरायटी पिक्चर्स के तहत उन्होंने फिल्में संगीत दिया। 1960 के दशक में सिनेमा का संगीत तेजी से बदल रहा था और अनिल दा ने संगीत से संन्यास लेने का निर्णय लिया और वे दिल्ली आ गए।
2: दिल्ली में 1963 में अनिल विश्वास ने ऑल इंडिया रेडियो में राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के निदेशक का पद संभाला। 1975 तक वे आकाशवाणी दिल्ली में सुगम संगीत के प्रमुख निर्माता रहे। इसके बाद उन्होंने दूरदर्शन की पहली प्रमुख टीवी श्रृंखला हम लोग के लिए संगीत तैयार किया और 1991 तक फिल्म प्रभाग के लिए कई वृत्त चित्रों का संगीत रचा। अनिल दा ने सुगम संगीत यानी लाइट म्यूजिक के बारे में क्या बताया था, आइए सुनते हैं।
3: जो लाइट म्यूजिक जो ये नाम इसको दिया गया है, ये आजकल का नाम है। पहले भी हमारे पास आवाम के दिल बहलाने के लिए बहुत सारी चीजें हुआ करती थी जिसे लाइट म्यूजिक के नाम से हम नहीं पुकारते थे। देहाती यानी फोक म्यूजिक जो है ना, जैसे हमारे स्टेज के म्यूजिक हुआ करते थे, जो हजार थिएटर के जो म्यूजिक है उसमें काफी अच्छा, खास करके मराठी थिएटरों में बहुत अच्छे संगीतकार लोग, जैसे बाल गंधर्व जैसे लोग, वो लोग शास्त्रीय संगीत को लेके इसको आगे बढ़ाते रहे। इसकी शुरुआत असल में जो बोलती फिल्म है इसी के साथ में इसकी इब्तिदा है। देखिए उन दिनों में हमारे पास प्लेबैक के लिए कोई उपाय, हमारे पास कोई साधन नहीं था। लिहाजा जो लोग उस वक्त काम करते थे फिल्मों में और जो लोग पहले से मशहूर हो चुके थे उन्हीं लोग को हीरो हीरोइन का काम करना पड़ता था। असल में ये एक बात उस वक्त जो शुरू हो गई थी कि बहुत सरल करके, बहुत सहल करके इसको तैयार किया जाए और उसपे आवाम जो है ना वो इनके साथ गुनगुनाना शुरू कर दिया और यहीं से इब्तिदा है कि फिल्म म्यूजिक मकबूल होने लगा और सब मन को अच्छा लगने लगा। ये जो चीज है ना, ये तो सुर में ये बेसुर में कोई भी आदमी या कोई लड़की से गुनगुना, प्रेम नगर में बनाऊंगी घर में, ये कहने के लिए कोई खास लोगों तकलीफ नहीं हुआ करती थी। और इसी तरीके से उन लोग को मद्देनजर रखते हुए जब ये संगीत बनाया जाता था तो इसी तरीके से ये मौसीकी जो है ना ये लाइट म्यूजिक के नाम से मशहूर होने लगा।
1: श्रोताओ, करियर के अंत में उन्होंने कुछ फिल्में की जैसे महेश कौल की सौतेला भाई और मोतीलाल की छोटी छोटी बातें, जिसमें मुकेश का गाना जिंदगी ख्वाब है भी था। 1986 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
2: 31 मई 2003 को अनिल विश्वास का नई दिल्ली में निधन होगा।
1: श्रोताओ, अनिल विश्वास की संगीत की धारा हमेशा गूंजती रहेगी, उनका योगदान हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा।
3: प्रेम नगर में बनाऊंगी घर मैं करके सब सिंगार।
1: श्रोताओ, स्वर धरोहर कार्यक्रम में आज के रिपीट। श्रोताओ, स्वर धरोहर में आज के लिए इतना ही। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे एक नए व्यक्तित्व के साथ, एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

0: कार्यक्रम स्वर धरोहर की आज की कड़ी में वाचन स्वर था निशा और आशुतोष का, आलेख था दीपा कुमारी का और प्रस्तुति सहयोग था डिंपल का। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया था अनुराग उपाध्याय और विशाल ने। कार्यक्रम के निर्माता थे आशुतोष कुमार।
1: यू आर लिसनिंग टू द वीकली प्रोग्राम स्वर धरोहर बेस्ड ऑन द आर्काइवल इनपुट्स ऑफ आकाशवाणी। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।
2: आप सुन रहे थे आकाशवाणी आर्काइव्स के सहयोग से निर्मित साप्ताहिक कार्यक्रम स्वर धरोहर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। இடம்பெற்றது ஸ்வர் தரோகர். நேர்களை இனி கேட்கலாம் இரவின் மடியில். நிகழ்ச்சியில் தில் படத்திலிருந்து சில பாடல்கள் ஒலிக்கின்றன.

0: இடம்பெற்றது இரவின் மடியில். தொடர்வது செய்தியறிக்கை டெல்லி அஞ்சல்.
1: ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கி சாத் மே ரத்னா பாண்டே. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोतों ने भी भाग लिया। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो।
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने

0: के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। महाराष्ट्र के भिवंडी के सत्र न्यायालय ने शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जांच अधिकारियों को आशंका है कि इस मामले के तार कई राज्यों में फैले परीक्षा धांधली गिरोह से जुड़े हो सकते हैं। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। पाकिस्तान के कराची में सिंध रेंजर्स के कंपाउंड पर आतंकवादियों के एक बड़े हमले में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मारे गए थे। फीफा विश्व कप फुटबॉल के नॉकआउट स्टेज में अमेरिका के कैलिफोर्निया में राउंड ऑफ 32 के शुरुआती मैच में दक्षिण अफ्रीका और कनाडा के बीच मुकाबला जारी है। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। भारत के 171 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस हार के साथ ही भारतीय टीम का इस विश्व कप में अभियान समाप्त हो गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish B. Abraham. Prime Minister Narendra Modi participated as the chief guest at Seychelles' 50th National Day celebrations. The occasion also showcased participation of 2 Indian Navy ships and a contingent of the Indian Armed Forces, reflecting the deep bonds of friendship and maritime cooperation between the two nations. Earlier, Mr. Modi addressed a joint press meet after delegation-level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria. Mr. Modi said, India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where partnership is based not on size but on mutual respect and trust. He said, India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
1: Meri Seychelles ki yatra ka sandesh spasht hai. Bharat ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें।
2: The two countries also exchanged several agreements in a range of fields, including agriculture, finance, space, and health. On the occasion,

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के दो युद्ध पोतों ने भी भाग लिया। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो।
1: मेरी सेशल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र

0: राम गुलाम से मुलाकात की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांवों की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में कल राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रूपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा के बाद ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ग्रीस यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल कई स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। भारत के किदाम्बी श्रीकांत ने यूएस ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स फाइनल में जगह बना ली। उन्होंने कैलिफोर्निया में सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकीमोतो को 22-20, 15-21, 21-19 से हराया। फीफा विश्व कप फुटबॉल के नॉकआउट स्टेज में अमेरिका के कैलिफोर्निया में राउंड ऑफ 32 के शुरुआती मैच में दक्षिण अफ्रीका और कनाडा के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। हाफ टाइम के बाद भी दोनों टीमें 0-0 की बराबरी पर हैं। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में उत्तर पूर्वी भारत, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi participated as the chief guest at Seychelles' 50th National Day celebrations. The occasion also showcased participation of 2 Indian Navy ships and a contingent of the Indian Armed Forces, reflecting the deep bonds of friendship and maritime cooperation between the 2 nations. Earlier, addressing a joint press conference after delegation-level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria, Mr. Modi said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity, and where partnership is based not on size but on mutual respect and trust. He said India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
2: Meri Seychelles ki yatra ka sandesh spasht hai. Bharat aise Hind Mahasagar ki kalpana karta hai jahan samudri suraksha ke sath aarthik samruddhi bhi badhe, jahan hamari saajhedari aakar nahi aapasi samman और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें।
1: The 2 countries also exchanged several agreements in a range of fields including agriculture, finance, space and health. On the occasion, PM Modi was conferred with the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. Later in the day, PM Modi addressed the National Assembly of Seychelles. Mr. Modi reached Victoria on Saturday on a 3-day visit to the East African island nation. On the sidelines of the Seychelles visit, PM Modi met with Mauritius Prime Minister Dr. Navin Chandra Ramgoolam. The 2 leaders discussed the ongoing cooperation between India and Mauritius. They also reviewed the progress made in the implementation of the special economic package extended by India. Both leaders reaffirmed the significance of the India-Mauritius enhanced strategic partnership under India's vision Mahasagar and neighborhood first policy and their shared commitment to the Global South. India categorically rejected

0: எஃப்எம் கோல்டு வழங்கிய நெஞ்சம் மறப்பதில்லை நிகழ்ச்சி கேட்டீர்கள். தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत भी शामिल हुए। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो।
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र रामगुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग

0: करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा के बाद ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि ग्रीस यात्रा के दौरान ये प्रतिनिधिमंडल कई स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। महाराष्ट्र के भिवंडी के सत्र न्यायालय ने शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जांच अधिकारियों को आशंका है कि इस मामले के तार कई राज्यों में फैले परीक्षा धांधली गिरोह से जुड़े हो सकते हैं। फ्रांस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कल एक विमान दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। आपात सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। यूरोप में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य सहित कई देशों ने सप्ताहांत में तापमान के उच्चतम रिकॉर्ड दर्ज किए। फीफा विश्व कप फुटबॉल के नॉकआउट स्टेज के शुरुआती मैच में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया है। मुकाबले में हार के साथ ही दक्षिण अफ्रीका का अभियान इस विश्व कप में समाप्त हो गया। ग्रुप चरण के मुकाबले खत्म होने के बाद 32 टीमें नॉकआउट स्टेज में पहुंची। इस चरण में 16 मैच खेले जाने हैं। भारत के स्टार शटलर किताम्बी श्रीकांत ने यूएस ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स फाइनल में जगह बना ली। उन्होंने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकीमोतो को हराया। 33 वर्षीय श्रीकांत का सामना फाइनल में चीनी ताइपे के 8वीं वरीयता प्राप्त सू लिंग यांग से होगा। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इस हार के साथ ही भारतीय टीम का इस विश्व कप में अभियान समाप्त हो गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आशीष इब्राहिम। Prime Minister Narendra Modi participated as the chief guest at Seychelles' 50th National Day celebrations. The occasion also showcased participation of 2 Indian Navy ships and a contingent of the Indian Armed Forces, reflecting the deep bonds of friendship and maritime cooperation between the two nations. Earlier, addressing a joint press conference after delegation-level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria, Mr. Modi said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where partnership is based not on size but on mutual respect and trust. He said India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
2: Meri Seychelles ki yatra ka sandesh spasht hai. Bharat aise Hind Mahasagar ki kalpana karta hai. जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले।
1: The two countries also exchanged several agreements in a range of fields, including agriculture, finance, space and health. On the occasion, PM Modi was conferred with the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. Later in the day, PM Modi addressed the National Assembly of Seychelles. Mr. Modi reached Victoria on Saturday on a 3-day visit to the East African island nation. On the sidelines of the Seychelles visit, PM Modi met with Mauritius Prime Minister Dr. Naveen Chandra Ramgoolam. The two leaders discussed the ongoing cooperation between India and Mauritius. They also reviewed the progress made in the implementation of the special economic package extended by India. Both leaders reaffirmed the significance of the India-Mauritius enhanced strategic partnership under India's vision Mahasagar and neighborhood first policy and their shared commitment to the Global South. India categorically rejected allegations made by Pakistan regarding the recent incident in Karachi and termed them as baseless. In response to media queries, External Affairs Ministry spokesperson Ranadhir Jaiswal said that instead of pointing fingers at others, Pakistan should look inwards and take credible action against the terror infrastructure on its territory. Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadda will launch the Samagra Shishu Bal Swasthya Karyakram

0: இனியராகும் நிகழ்ச்சியில் இதுவரை பண்டிட் கார்த்திக் குமார் அவர்களின் சுர்பஹார் இசை நிகழ்ச்சி கேட்டீர்கள். தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। वहां उनका भव्य स्वागत किया गया। समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत भी शामिल हुए। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो।
2: मेरी सेशल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
2: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत द्वारा दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा।

0: இதுவரை பொங்கும் மங்கலம் நிகழ்ச்சியில் போந்துவாக்கம் பி டி பலராமன் அவர்களின் நாகஸ்வரை கேட்டீர்கள். வடபழனி என் விஜயகுமார் அவர்கள் தவில்.
1: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोतों ने भी भाग लिया। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो।
3: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
3: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
2: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत द्वारा दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने कल गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नज़र और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए गए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। सोशल मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। पाकिस्तान के कराची में सिंध रेंजर्स के